0: गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: For show timings, check out the Radio Masti app now.

अच्छा, जो हमें अभी सबसे ज्यादा विलन नजर आ रही है वो एक टाइम पे बिल्कुल विलन नहीं थी, वो बहुत अच्छी वाइफ बनकर रहा करती थी। तो हो सकता है कि यार इतने सारे टेंट्रम झेलते झेलते उनके मन के सारे जज्बात अब बाहर आ गए। हाँ, मैं बात कर रही हूँ गोविंदा की वाइफ सुनीता जी की। डेफिनेटली मैं आज इन पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपको बताना चाहेगी, ऐसा होता है यार, बहुत सालों तक मन में बहुत कुछ भर के रखो ना, फिर अचानक से वो बाहर आता है और दर्द बयां करता है अलग लैंग्वेज में। सो एक टाइम पे गोविंदा और सुनीता की जब शादी हो गई थी, उसके बाद भी गोविंदा के जो र्यूमर्स आ रहे थे अफेयर के, उन्हें बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहे थे। इवन 90s में करिश्मा एंड गोविंदा ने 11 मूवीज एक साथ करी थी। हाँ जी, तो सुनने में आ रहा है कि उसी दौरान, स्पेशली हीरो नंबर वन मूवी के दौरान, गोविंदा एंड करिश्मा की नजदीकियां बहुत ज्यादा थी, बट स्टिल सेट्स पर ये सब लोग बात करते थे और उनकी वाइफ सुनीता वहां आती भी थी, लेकिन किसी के सामने भी उन्होंने सीन नहीं क्रिएट किया, किसी के सामने कंप्लेन नहीं करी। तो ऐसे बड़े बड़े एक्सपर्ट कहते हैं कि अभी अगर सुनीता जी कुछ कह रही हैं तो कुछ सोच समझ के कह रही होंगी, अभी उनका जो होता है ना सब्र का बांध, वो टूट सा गया है। आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है, कुछ और भी बातें इनसाइट्स के साथ डेफिनेटली आपका इंतजार कर रहे हैं। डोंट गो एनीवेयर।

0: Looking for the perfect reason to buy jewelry? Well, this National Day, Joyalukkas gives you not one, but two compelling ones. Enjoy 9% GST absorbed on diamond jewelry and 30% off gold jewelry making charges. Beautiful designs, incredible value. Joyalukkas, the world's favorite jewelers. Now presenting One Nation Infinite Brilliance. Offer valid till 10th August only. Visit 412-320 and 134 Serangoon Road. Wishing one and all a happy and bright National Day. The Joyalukkas way.
1: See you soon, boys.
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
3: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
4: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
2: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। द आरजे अकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू, that too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर।
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन जोश में
0: रहो। अच्छा आपको ना रील्स बनाना तो पसंद है, पॉडकास्ट सुनकर बोलना और रिहर्स करना भी पसंद है, लेकिन आपकी वॉइस में, आपके टेक्सचर में, आपके क्वेश्चनिंग के तरीके में वो बात है जिससे आप थोड़ा आगे बढ़ पाए। सो इन सारी चीजों को कवर करेगा एक ऐसा हाइब्रिड प्रोग्राम जिसे आप अपनी प्रेजेंट जॉब के साथ भी कैरी ऑन कर सकते हैं। राइट, तो सिर्फ हम हॉबी की बात नहीं कर रहे हैं, एक डिफरेंट स्किल सेट की बात कर रहे हैं। मस्ती मीडिया नेटवर्क लेकर आया है आपके लिए मस्ती मीडिया अकेडमी, जिसमें रेडियो प्रेजेंटेशन से लेकर पॉडकास्टिंग से लेकर इंटरव्यूइंग से लेकर कॉन्टेंट क्रिएशन से लेकर पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स आपको बहुत कुछ मिल सकता है इन अ शॉर्ट वाइल। सो थ्योरी नहीं, आपको स्टूडियो ट्रेनिंग भी मिलेगी, लाइव रेडियो एक्सपीरियंस भी मिलेगा। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज जो है वो आपको एक ही अम्ब्रेला के अंडर मिलेगी, दैट इज मस्ती मीडिया अकेडमी में। राइट, चलो डिटेल के लिए, एप्लीकेशन फॉर्म के लिए डेफिनेटली आप हम तक पहुंच सकते हैं info@radiomasti.com.sg पर। मैं आरजे नुपुर, मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है। डोंट गो एनीवेयर, मेरी जान।

0: सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: जोश में रहो।
3: दुनिया भर के बहुत सारे किस्से हमारी आंखों के सामने आ रहे हैं कि एक सेलिब्रिटी दूसरे सेलिब्रिटी से शादी कर रहा है, एक सेलिब्रिटी दूसरे सेलिब्रिटी को नीचा दिखा रहा है, एक सेलिब्रिटी दूसरे सेलिब्रिटी को डिवोर्स दे रहा है, मतलब समथिंग लाइक दैट। कोई किसी के बेबी का नाम रिवील कर रहा है। तो बहुत सारे आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस नजर आ रहे होंगे, लेकिन मैं आज इन पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपको बताना चाहेगी कि एक टॉपिक है जो एक जमाने में बड़ा पॉपुलर था, लेकिन आजकल वो दब सा गया है। मतलब सामने तो नजर नहीं आ रहा है, पीछे का तो पता नहीं। एंड दैट इज कि डॉन्स जो है वो बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को धमकियां दे रहे हो। एक्सेप्शंस है, सलमान खान को साइड रख दो आप यार, लेकिन कुमार सानू, हां जी जाने माने बॉलीवुड सिंगर, इन्होंने बोला है कि ये अपने टाइम पे जब बहुत ज्यादा फेमस थे तो अंडरवर्ल्ड के जो डॉन्स हैं उन्होंने इन्हें इनविटेशन दिया था कि दुबई आके परफॉर्म करो और हम यहाँ पर तुम्हारा परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं। तो इन्हें डर तो बहुत ज्यादा लगा था परफॉर्म करते हुए, लेकिन उस दौरान इस सिस्टम को मना करने का कोई ऑप्शन नहीं था। इनविटेशन आया है तो जाना पड़ेगा, वरना आप इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस कीजिए। तो इन्होंने भी अपने टाइम पर ये सारी चीजें फेस कर रखी है। ओ हो। आज नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है, डोंट गो एनीवेयर मेरी जान।

0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी।
1: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: ggmart, योर पर्सनल ग्रोसर। जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
3: आई लव यू रसना।
2: समोसा पैटीज, फूटी, लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards, only on Radio Musti 24/7 Live.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन जोश में
2: रहो। अच्छा कुछ लोग ना आपके जख्म पर हल्का हल्का सा नमक छिड़क देते हैं कि हाँ हाँ थोड़ा नमकीन तो होना चाहिए स्वाद अच्छा आएगा। और कुछ लोग आपके जख्मों को कुरेद देते हैं, यानी एकदम मतलब होता है उसका आपको परेशान कर देंगे, आपकी पुरानी चोट को नया कर देंगे। हाँ तो कई बार सेलिब्रिटीज ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं कि पूरा का पूरा करियर रिलेटेड या करियर इंफ्रास्ट्रक्चर या स्टडी मटेरियल जो है इंडिया का वो हिल सा जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल आर माधवन, जिनको आप अलग अलग वजहों से पसंद करते हैं। सो आर माधवन ने कह दिया है कि उन्हें जब पता चला कि फिनलैंड जैसी कंट्री जो कि वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री में काउंट होती है, वहां का एजुकेशन मॉडल जो है ना वो आज से नहीं बल्कि कई साल पहले से, आप कह सकते हैं अर्ली 20s से या लेट 90s से ऐसा है कि बच्चे जो हैं वो बिना कोई होमवर्क के घर जाते हैं और कोई डिलेड एग्जाम्स नहीं होते हैं, ट्रेन्ड टीचर्स और प्रेशर बिल्कुल नहीं दिया जाता है, और मतलब हर तरह से चीज़ें जो है ना वो बच्चे के लिए फेवरेबल बना दी जाती है कि वो अपनी उम्र में 14-15 साल का जब तक होगा ना तब तक वो बहुत खुश एक हैप्पी चाइल्ड निकल कर आएगा। तो ऐसा ही सिस्टम वो चाहते हैं कि इंडिया में भी होना चाहिए। अब देखो बोल तो इन्होंने दिया और चाहता भी हर कोई है, लेकिन क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है? आ आ आ आ बहुत मुश्किल है यार। आज से नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर मेरी जान।

0: फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ।

अच्छा कुछ लोग ना आपके जख्म पर हल्का हल्का सा नमक छिड़क देते हैं कि हाँ हाँ थोड़ा नमकीन तो होना चाहिए स्वाद अच्छा आएगा। और कुछ लोग आपके जख्मों को कुरेद देते हैं, यानी एकदम मतलब होता है ना उसका, आपको परेशान कर देंगे, आपकी पुरानी चोट को नया कर देंगे। हाँ तो कई बार सेलिब्रिटीज ऐसी सी बातें कर देते हैं कि पूरा का पूरा करियर रिलेटेड या करियर इंफ्रास्ट्रक्चर या स्टडी मटेरियल जो है इंडिया का वो हिल सा जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल आर माधवन, जिनको आप अलग अलग वजहों से पसंद करते हैं, सो आर माधवन ने कह दिया है कि उन्हें जब पता चला कि फिनलैंड जैसी कंट्री जो कि वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट कंट्री में काउंट होती है, वहां का एजुकेशन मॉडल जो है ना वो आज से नहीं बल्कि कई साल पहले से, आप कह सकते हैं अर्ली 20s से या लेट 90s से ऐसा है कि बच्चे जो हैं वो बिना कोई होमवर्क के घर जाते हैं और कोई डिलेड एग्जाम्स नहीं होते हैं, ट्रेन्ड टीचर्स और प्रेशर बिल्कुल नहीं दिया जाता है, और मतलब हर तरह से चीज़ें जो है ना वो बच्चे के लिए फेवरेबल बना दी जाती है कि वो अपनी उम्र में 14-15 साल का जब तक होगा ना तब तक वो बहुत खुश एक हैप्पी चाइल्ड निकल कर आएगा। तो ऐसा ही सिस्टम वो चाहते हैं कि इंडिया में भी होना चाहिए। अब देखो बोल तो इन्होंने दिया और चाहता भी हर कोई है, लेकिन क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है? आ आ आ आ बहुत मुश्किल है यार। आज से इन पर मस्ती मॉर्निंग शो पर मेरी जान।

0: celebration begins around a table. And this August, Singapore's biggest celebration deserves a feast to match. And let's get together on 9th August for a special National Day buffet from only $58 plus, complete with a live Prata station, Singapore-style chicken curry, succulent kebabs, royal curries, and irresistible Indian desserts. Celebrate, indulge, and say Happy National Day, Singapore, over a royal feast. Shahi Maharani North Indian Restaurant. Reserve your table today. Log on to www.shahimaharani.com. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual-focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन जोश में रहो।
2: अच्छा, किसी भी काम में जब पैसा इन्वॉल्व हो जाता है ना, तो वो काम और बेहतर हो जाता है। लेकिन किसी भी रिश्ते में जब पैसा इन्वॉल्व हो जाता है, डेफिनेटली डॉलर्स की भी बात कर रही हूँ मैं, कि वो जैसे ही इंक्लूड होता है ना, तो रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है पर्सनल प्रोफेशनल ये चीजें मिक्स नहीं करनी चाहिए, राइट? मस्ती मॉर्निंग शो पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ। एंड डेफिनेटली अगर हम बात करें बहुत सारे एक्टर्स की, तो ये पर्सनल लेवल पर कई बार इतने काम कर देते हैं कि इन्हें प्रोफेशनल लेवल का एक्टर समझा ही नहीं जाता है। हाँ, शहनाज गिल जो एक टाइम पे रियलिटी शो में सबसे कम अमाउंट लेकर आई थी, लेकिन वहां से पॉपुलैरिटी मिलते ही ये वहां की हाईएस्ट पेड एक्टर बन गई थी। तो इनका ये कहना है कि मैंने शुरुआत में इंडस्ट्री में ना बहुत ही सस्ते में, या यूं कहूं बिना कोई अमाउंट चार्ज किए ही काम किया है, तो लोगों ने मेरी अहमियत को समझा ही नहीं। और आज मुझे समझ में आ रहा है कि अमाउंट लेना कितना इंपॉर्टेंट है। और मैं तो आपसे बोलूंगी, आप भी जिस प्रोफेशन में है ना, फ्री में कुछ मत कीजिए, किसी भी रिलेटिव के लिए नहीं, किसी के लिए कुछ नहीं, आपको कुछ अमाउंट लेना ही पड़ेगा। आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है, डोंट गो एनीवेयर मेरी जान।

0: सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: जोश में रहो।
3: इमेजिन कीजिए, दो लोग इतना लजीज खाना खाएं कि वो कहें कि बस खाना खाने के बाद अब हमें घर जाना है और बस एक लंबी नींद लेनी है, क्योंकि मतलब मन भर गया, पेट भर गया और क्या जरूरत है। हाँ, सो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में ये पल एंजॉय कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज। सिंगापुर जब 61st बर्थडे सेलिब्रेशन मोड पे है, तो शाही महारानी नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट ने ये जो ओकेजन है 31st ऑफ अगस्त तक इंट्रोड्यूस कर दिया है। राइट, सो वीकडे बूफे आपके लिए डेफिनेटली पूरा क्यूरेट किया गया है। सो दो लोग 61 प्लस डॉलर में भरपेट जो लंच है वो एंजॉय कर सकते हैं, जो कि पहले 68 प्लस डॉलर में आपको मिलता था। तो नॉर्थ इंडियन एक्सपीरियंस आप लीजिए, तंदूरी डिलाइट्स, रिच एंड एरोमेटिक करीज, फ्रेशली बेक्ड नान, टेम्पटिंग डेजर्ट्स, और मील का परफेक्ट एंडिंग होगा किससे, एक इंडियन सिग्नेचर कटिंग मसाला चाय के साथ। सो मंडे टू फ्राइडे 12 PM to 2:30 PM आप इंजॉय कर सकते हैं। सिंगल डाइनर के लिए 38 प्लस डॉलर चार्जेस हैं और 7 to 12 years के बीच के बच्चों के लिए 25 प्लस डॉलर है। वीकेंड्स एंड पब्लिक हॉलीडेज आर एक्सक्लूडेड। सो इस नेशनल डे को सिर्फ सेलिब्रेट मत कीजिए, रॉयली सेलिब्रेट कीजिए शाही महारानी नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट के साथ। यू कैन डेफिनेटली रिजर्व योर टेबल एट 6235 8840 और www.shahimaharani.com। आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी।
0: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: ggmart, योर पर्सनल ग्रोसर।
3: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: सुन टका टक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: जोश में रहो।
1: क्या बात है, क्या बात है। जिस मूवी के लिए अनिल कपूर ने 7 महीने तक फिजिकल, आप कह सकते हैं, ट्रेनिंग ली, मेंटली एक पॉलिटिकल कैरेक्टर में ढलने की कोशिश करी, उस मूवी का नाम बताना था आपको बस। सो रेडियो मसीर 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ, और आज मैंने एक फेमस सी मूवी के एक फेमस से डायलॉग में आपसे पूछा था इस डायलॉग को पहचानने को।
3: तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है, पहले सपने दिखाते हैं और फिर कहते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता।
1: एग्जैक्टली अगर आप पहचान गए हैं इस डायलॉग को तो बता दीजिए, ये बोला था मैंने, लेकिन डेफिनेटली बहुत सारे सही जवाब मुझ तक पहुंच चुके हैं। और वो डायलॉग कौन सा था? डायलॉग तो था जो था, लेकिन मूवी का नाम था नायक। हाँ जी, एक दिन का CM अनिल कपूर निकल कर आए थे इसमें। एंड यू नो वॉट, ये जो मूवी है पहले आमिर खान को ऑफर करी गई थी। इवन इस मूवी का जब प्री प्रोडक्शन चल रहा था तो आमिर खान ने इस मूवी को डिक्लाइन कर दिया था, पता नहीं क्यों। हाँ, फिर शिवाजी राव यानी अनिल कपूर वाला किरदार जो है ना, वो शाहरुख खान को भी ऑफर किया गया, लेकिन उनको भी लगा कि यार इस नैरेटिव में, इस ओवरटोन वाली क्वालिटी में मैं बढ़िया नहीं लगूंगा, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा उन्होंने बहुत सारा दिमाग लगा लिया, और उसके बाद उन्होंने इस मूवी को क्विट कर दिया। तब जाकर ये मूवी गई थी अनिल कपूर के पास। डेफिनेटली इस मूवी में एक एक्चुअल टेलीविजन जो है ना, कि टेलीविजन इंटरव्यू लिया जा रहा है, टेलीविजन इंटरव्यू के दौरान टीवीज लगे हुए हैं और हर तरह से एक सेटअप दिखाई दे रहा है। तो ये एक बढ़िया सा ओरिजिनल सा टेलीविजन सेट बनाया गया था जिसमें इंटरव्यू करवाया जा रहा था, और 700 टेलीविजन मॉनिटर्स लगाए गए थे, और इस मूवी में इन रियल वो सारी चीजें शूट करी गई थी। सो अगर आपको कभी कुछ पुराने एक्चुअल सिनेमा के आइकॉनिक एग्जाम्पल देखने हो, मूवी का मजा लेना हो, तो डेफिनेटली आप नायक मूवी देख सकते हैं। तो जितने लोगों ने सही जवाब भेजा उनका थैंक यू सो मच, ऐसे ही सही जवाब भेजते रहा करें और सुनते रहा करें रेडियो मस्ती 24/7 लाइव मेरे यानी आरजे नुपुर के साथ।

0: नाचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: Your Masti Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
0: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे।
4: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
5: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप।
6: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके, ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: वेंसडे का मुझे एक ही रीजन बहुत ज्यादा पसंद है, ये वीकेंड का ट्रेलर होता है। बस दो दिन और उसके बाद फ्राइडे की प्लानिंग शुरू हो जाती है। दैट्स व्हाट द बेस्ट पार्ट लाइक अबाउट वेंसडे। हेलो एवरीबॉडी, हेलो सिंगापुर, कैसे चल रहा है हालचाल? एमआरटी पकड़ ली, ऑफिस पहुंच गए, या अभी भी कॉफी और अलार्म के बीच में गोल गोल गोल गोल घूम रहे हो? ऑफ कोर्स अलार्म तो अभी कहां ही चल रहा होगा, राइट? हाय एवरीबॉडी, दिस इज मी आरजे मुग्धा आपके साथ, और अगले 3 घंटे में यहां पर रहूंगी इन द शो मस्ती हैंगआउट। तो जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप सुन रहे हैं और जो भी आप सोच रहे हैं, थोड़ी देर के लिए उसको किनारे कर दीजिए, थोड़ा सा स्माइल ऑन करिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे सिंगापुर की बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स की, एज ऑलवेज जो कि मैं करती हूँ, बॉलीवुड की फुल ऑन गॉसिप जो कि हर बार कुछ ना कुछ नया ही लेकर आती है, एंड देन वील टॉक अबाउट लाइक ओएमजी स्टोरीज जो कि मैं हर बार बहुत ही कमाल के लेके आती हूँ, ऐसा मुझे लगता है। बीच बीच में ऑफकोर्स हमारे प्यारे गाने तो बजेंगे ही। वैसे हर वेंसडे ना मुझे एक बात जो है वो याद आती है, क्योंकि वेंसडे मुझे याद दिलाता है हम सब इतनी फास्ट लाइफ जी रहे हैं, मतलब कितनी फास्ट लाइफ जी रहे हैं। कैलेंडर के पेजेस बदलते रहते हैं, मीटिंग्स खत्म होती रहती है, नोटिफिकेशन आते रहते हैं, लेकिन एक अच्छी सी हंसी और 2 मिनट की मस्ती का जो वक्त है वो निकालना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, भूल जाते हैं।

0: 10 का 20 10 का 20 10 का 20 10 का 20।
1: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
2: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: नेशनल डे लॉन्ग वीकेंड का नाम सुनते ना दो तरह के लोग एक्टिव हो जाते हैं। एक जो बोलते हैं चलो घर पर रिलैक्स करते हैं और दूसरे चलो गूगल मैप ऑन करके रास्ता ढूंढना शुरू कर देते हैं। दोनों चलो जरूर करते हैं और जैसे गूगल मैप ऑन होता है क्या दिखता है, जेबी पे कितना जाम है चेक करो। अगर आप इस लॉन्ग वीकेंड में मलेशिया जाने का प्लान बना रहे हैं तो जरा ये अपडेट आपके लिए है, सुन लीजिए। आईसीए ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि 7 अगस्त से 10 अगस्त के बीच में वुडलैंड्स और तुआस चेक पॉइंट जो है उनको बहुत हैवी ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नेशनल डे लॉन्ग वीकेंड की वजह से ना काफी ज्यादा ट्रैवलर्स जो है दिल क्रॉस द बॉर्डर्स। तो साथ में जो फरवरी से चेक पॉइंट्स पे सिक्योरिटी चेक और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है, इसीलिए इमिग्रेशन क्लियरेंस जो है वो वैसे भी नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा ही टाइम ले रहा है। इसीलिए अगर आपका प्लान चलो शॉपिंग करेंगे, चलो फूड हंटिंग करेंगे, चलो एवी जाएंगे, तो क्विक जेबी गेटवे का प्लान थोड़ा जल्दी निकलिएगा। ऑफ पीक आवर्स आप चूज करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा और पेशेंस कम से कम 2-3 बैग्स को एक्स्ट्रा भर के ले जाइएगा। हेडफोन्स भी, क्योंकि जो दूसरों की बातें अवॉइड करना चाहते हैं वो हेडफोन्स लगा के बैठ जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए क्या है ना, हॉलिडे का मूड ट्रैफिक में खराब हो जाए ऐसे मैं चाहती नहीं हूँ, तो उससे बेटर है कि प्लानिंग थोड़ी स्मार्ट हो। आप सुन रहे हैं मुग्धा को, आई विल बी राइट बैक। फिलहाल ये ट्रैक आपका मूड अच्छा करेगा।

0: looking for the perfect reason to buy jewelry? Well, this National Day, Joyalukkas gives you not one, but two compelling ones. Enjoy 9% GST absorbed on diamond jewelry and 30% off gold jewelry making charges. Beautiful designs, incredible value. Joyalukkas, the world's favorite jewelers. Now presenting One Nation Infinite Brilliance. Offer valid till 10th August only. Visit 412-320 and 134 Serangoon Road. Wishing one and all a happy and bright National Day. The Joyalukkas way.
1: जब हमारा कोई शो होता है सुपर हिट तो आप कहते हैं और रेडियो मस्ती 24/7 कहता है क्यों नहीं. प्रेजेंटिंग द encore ऑफ योर फेवरेट शोज, अनदर डे अनदर टाइम फॉर योर लिसनिंग प्लेजर ओनली, बिकॉज़ सुपर हिट्स डिजर्व अ रिपीट. चेक आउट द encore शो स्केड्यूल ऑन आवर ऐप मेन्यू.
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुद्धा के साथ।
1: अब जब एनडीपी की बात हुई है, नेशनल डे की बात हुई, तो नेशनल डे का एक्साइटमेंट सिर्फ 9 अगस्त को नहीं होता है, उसकी जो फीलिंग है ना वो उसके पहले से शुरू हो जाती है। और ऐसा हर जगह पे होता है। फेस्टिवल की फीलिंग फेस्टिवल के दिन से कम महीना भर पहले से शुरू होती है, तब जाके तो फेस्टिवल में मजा आता है। ऑफिस में फ्लैग्स नजर आते हैं, एमआरटी स्टेशन पर फेस्टिव वाइब्स आपको दिखाई देने लग जाती है, और हर किसी को लगता है सिंगापुर का बर्थडे आ गया। देखिए, खुद सिंगापुर तो बोलेगा नहीं हैप्पी बर्थडे टू मी, तो वो जरिया लोग हैं, उनके एक्सप्रेशंस हैं, उनकी हरकतें हैं जो सिंगापुर को एक महीने पहले से फील कराते हैं। द काउंटडाउन हैज बिगन ऑफिशियली, है ना, हम सब यही तो करते हैं इंस्टा स्टोरीज लगा लगा के। अब इसी सेलिब्रेशन का एक बहुत खास और इम्पोर्टेंट हिस्सा है नेशनल डे का मैसेज। इस साल 8 अगस्त यानी नेशनल डे की ईव पर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वॉन्ग जो है वो देश को संबोधित करेंगे इवनिंग 6:45। इंग्लिश में वो अपना मैसेज देंगे जिसमें पूरे साल का जो सफर है उसके बारे में बात होगी, आगे की प्रायोरिटीज पर डिस्कशन होंगे, मतलब स्पीच में मैंशन होगा, सिंगापुर के फ्यूचर विजन की बात भी यहाँ पर की जाएगी। उसके बाद अलग अलग भाषाओं में नेशनल डे मैसेज जो है उसको ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, ताकि क्या होगा ना, ज्यादा से ज्यादा जो सिंगापुरियंस है उन तक ये संदेश पहुंच पाए, और वो पहुंच तो जाएगा, समझ पाए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो मुझे लगता है नेशनल डे की सबसे खूबसूरत बात ना यही है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द फायरवर्क्स या परेड या सेलिब्रेशन, ये एक मौका होता है कि रुक कर देखें हमने कितना लंबा सफर तय किया है। बर्थडे है ना, पूरे साल की बात करेंगे और फिर नए हौसलों के साथ आगे के सफर की शुरुआत और प्लानिंग भी तो करनी है ना।

0: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
3: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
2: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
3: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
4: जीजी।
3: कृषि वल नट्स ओनली ऑन GGMartOnline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए GGMartOnline.com।
4: GGMart, योर पर्सनल ग्रोसर।
5: थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो,
6: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके, ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
7: सिंगापुर में गणेश चतुर्थी की तैयारियां दे आर ऑन फुल स्विंग, और असली काउंटडाउन तब शुरू हो जाता है जब किचन की शॉपिंग लिस्ट और पूजा की शॉपिंग लिस्ट दोनों एक साथ मैग्नेट में चिपक करके फ्रिज पे दिखाई देती हैं। एक दूसरे के बाहों में बाहें डाल के, गले में हाथ डाल के, हाथ पकड़ के चलो शॉपिंग करने वाले मूड में, है ना। अगर आप इस साल बापा का स्वागत करने का प्लान कर रहे हैं, मैं कुछ चीजों को बहुत आसान बना सकती हूँ। GGMart जो है वो लेकर आए बहुत ही खास फेस्टिवल अपडेट। Why? Because गणेश आइडल्स की ऑनलाइन बुकिंग ना GGMart पर शुरू हो चुकी है। आप जो है ना अपने बापा के लिए पहले से बुकिंग कर सकते हैं, और कलेक्शन के लिए 9, 10, 11, 12 और 13 सितंबर में अपनी प्रेफर्ड डेट जो है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। आई नो इट्स सितंबर, लेकिन आपको क्या लगता है इस अगस्त को खत्म होने में और सितंबर आने में कितना टाइम लगेगा? यूं ऐसे इसीलिए। अब देखिए, आइडल का जो प्राइस रेंज है दैट इज 50 से 120 सिंगापुर डॉलर्स, और हर गणेश आइडल के साथ आपको एक फ्री पूजा किट भी दिया जा रहा है। बुकिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें घूमते फिरते थोड़ा सा इवनिंग वॉक करना है तो अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप वॉक इन ऑप्शंस भी ले सकते हैं। और इफ यू टॉकिंग अबाउट द फेस्टिव सीजन, शॉपिंग की बात है तो सिर्फ पूजा की तैयारी क्यों करेंगे हम? प्रसाद चढ़ाएंगे हम, साथ में लोगों को भी तो कुछ कुछ बांटेंगे ना। तो GGMart में सब कुछ है। दे हैव दिस होल रेंज ऑफ क्रिशिवल कैश्यू, सॉल्टेड प्लेन चिली, असॉर्टेड फ्लेवर्स हैं, और साथ में ड्राइड क्रैनबेरीज, गुलकंद, जामुन हनी, बेरी हनी, फॉरेस्ट हनी, अजवाइन हनी और जामुन का जूस है, चिया सीड्स। इफ यू आर फास्टिंग इन केस, तो आपके लिए बहुत ऑप्शंस हैं। जूसेस हैं, चिया सीड्स हैं, करी लीफ पाउडर है आपके हेल्दी गट के लिए, और बालों में भी लगा सकते हैं इसको। रागी बिस्किट्स, फ्लेक्सी, आई मीन दे हैव इमेंस रेंज, आप जो भी पसंद करना चाहें, मतलब पूजा की तैयारी से लेकर गिफ्टिंग तक का जो पूरा है ना, और घर की हेल्दी पैंट्री। तो इस बार शॉपिंग अलग अलग जगहों से नहीं होगी, एक स्मार्ट शॉप एक ही जगह पर हो जाएगी। देखिए, विजिट आपको करना है GGMart, अगर आप जाना चाहते हैं तो 432 Balestier Road, और अगर आप इनके ऑनलाइन शॉप पे जाना चाहते हैं तो घर बैठिए और जल्दी टाइप करिए www.ggmartonline.com और पसंद करिए और ऑर्डर करिए। सिंपल, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये आपका पर्सनल ग्रोसर है, समझे? सो मेक दिस फेस्टिव सीजन मोर स्पेशल।

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर, गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: बॉलीवुड में एक डायलॉग आपने सुना ही होगा, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, लेकिन शाहरुख खान के केस में लगता है डायलॉग थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा। कॉम्पिटिशन चाहे जितना भी हो, किंग तो किंग ही रहता है। काफी दिनों से ना रूमर्स ये चल रहे थे कि शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म किंग जो है शायद पोस्टपोन हो सकती है, लेकिन अब ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है, धूल हट चुकी है रिलीज डेट में कोई चेंज नहीं होगा और फिल्म इसी दिसंबर क्रिसमस विंडो में थिएटर्स में आ जाएगी। अब मजेदार बात यह है कि एसआर के किसी छोटी मोटी कंपटीशन का सामना बिल्कुल नहीं कर रहे, इसलिए पोस्टपोन की बातें हवा में उड़ रही थी। आपको पता है एक तरफ इनका सामना होगा मार्वल की अवेंजर्स डूम्सडे से, दूसरी तरफ आएगी जुमांजी ओपन वर्ल्ड और एक तरफ है ड्यून पार्ट 3। हमारे किंग बॉलीवुड से पंगा नहीं लेते हैं, हॉलीवुड से पंगा लेते हैं। इंटरनेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप है हमारा बॉक्स ऑफिस इस बार। मुझे लगता है शाहरुख खान के फैंस अभी से एक ही लाइन बोल रहे होंगे, पिक्चर का कंपटीशन नहीं देखेंगे, बस फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखेंगे। बात तो सही है यार, अब देखना ये होगा कि क्रिसमस का ये जो मेगा क्लैश है ऑडियंस कौन से किंग को अपना किंग बनाती है।
2: जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा, ओ जालिमा।
1: फिलहाल ये खबर, आगे बढ़ेंगे इसके साथ। आप सुन रहे हैं मुग्धा को। Stay tuned and stay connected.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: हैंग आउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंग आउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: कभी थिएटर में किसी ने फोन लाउड स्पीकर पे चला दिया हो, कभी पॉपकॉर्न किसी और की सीट पे गिर गया हो, कभी आप किसी और की सीट पे बैठ गए हो, कभी पाव किसी और की सीट पे रख दिया हो, ये सब तो होता है। पर सोचिए अगर पूरा मूवी शो एक मिस्टीरियस स्मेल की वजह से रोकना पड़ जाए तो नहीं। ये किसी हॉरर फिल्म की कहानी नहीं है, ये असली इंसिडेंट है। हाय, वेलकम बैक, दिस इज मी मुग्धा, आप मुझे सुन रहे हैं एंड दिस इज द न्यूज फ्रॉम कोलंबिया। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे थिएटर्स में आ चुकी है, लेकिन इस थिएटर में कुछ और भी आ गया मूवी के साथ साथ। स्क्रीनिंग चल रही थी, ऑडियंस मूवी एंजॉय कर रही थी, पॉपकॉर्न हवा में उड़ रहे थे, तभी हवा में कुछ और भी उड़ा, एक अजीब सी स्मेल, तेज स्मेल, इतनी तेज कि लोगों को इमरजेंसी में बाहर निकालना पड़ा। सबको लगा गैस लीक हुई है, अथॉरिटीज भागती भागती आई, इन्वेस्टिगेशन हुई, बाद में रिपोर्ट्स में जो रीजन सामने आया उसने इंटरनेट को हंसा हंसा के उसकी गैस निकाल दी। पूरा हंगामा वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ अ फार्ट अटैक। यस, तो बेसिकली देयर वॉज अ गैस, लेकिन वो गैस किसी इंसान के अंदर से निकली थी। अब ये पूरा इंटरनेशनल एक्सीडेंट जो था ना, ऑफिशियल कंफर्मेशन तो खैर इसकी कौन आकर आगे देगा, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं स्पाइडरमैन ने विलन तो पकड़ लिया, पर इस इनविजिबल अटैकर का क्या किया जाए? सच बताइए, मूवी देखते वक्त आपको सबसे बड़ा डिस्टर्बेंस क्या लगता है? फोन की रिंगटोन, लेट एंट्री, दिस इनविजिबल सुपर पावर? वैसे एक और खबर आ रही है बॉलीवुड से। दिसंबर में होने वाला एक बहुत ही जबरदस्त बॉक्स ऑफिस का महामुकाबला, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि खान की जो रिलीज है वो बिल्कुल नहीं हटने वाली है और टक्कर वो हॉलीवुड की तीन फिल्मों से लेगी, पर ये तीन फिल्में कौन सी हैं? Do you have any idea? क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया था कुछ देर

कोई प्राइज नहीं मिलेगा, मैं तो ऐसे पूछ रही हूँ, आप बड़े फिल्म लवर फिल्म लवर फिल्म लवर करते रहते हो ना, कौन सी 3 फिल्म है हॉलीवुड की जिनसे हमारे किंग टक्कर ले रहे हैं, बताओ चलो जरा तो बताओ बताओ।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: नेशनल डे वीकेंड आ रहा है और अगर आप सोच रहे हैं कि फैमिली या फ्रेंड्स के साथ एक रॉयल नॉर्थ इंडियन लंच प्लान किया जाए तो यस ऑफ कोर्स करना चाहिए। क्यों रोज रोज घर पे खाना बनाना, शाही महारानी है ना जी। सिंगापुर के नेशनल डे सेलिब्रेशन के लिए 9 अगस्त को स्पेशल नेशनल डे लंच बुफे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हमारा शाही महारानी ने ये किया है। अडल्ट के लिए बुफे का अलग प्राइस है, 7 से 12 साल तक के बच्चों के लिए अलग प्राइस है और 7 साल से जुड़े बच्चों के लिए फ्री है जी। प्राइसेस के लिए आप इनकी वेबसाइट पे जाइए। वैसे 58 प्लस डॉलर पर पर्सन, 7 से 12 के लिए है 40 प्लस, एंड एज आई मेंशन 7 से छोटे बच्चों के लिए फ्री में ले जाओ और फ्री में खिलाओ। मेन्यू बहुत ही अमेजिंगली सरप्राइजिंग है। लाइव पराठा स्टेशन है, लोकल करी चिकन है, किड्स के लिए स्पेशल मेन्यू है, बलून्स है, मतलब पूरी फैमिली के लिए सेलिब्रेशन। और अगर आप वीकडे लंच प्लान कर रहे हैं तो पूरे अगस्त मंथ में मंडे से लेके फ्राइडे तक दोपहर 12 से लेके 2:30 बजे तक, दैट्स

5:30 आपका वीकडे बुफे अमेजिंग आपको मिलने वाला है यहाँ पे. दो लोगों के लिए 61 प्लस प्लस डॉलर्स, रेगुलर जो है वो 68 प्लस प्लस. उससे भी ज्यादा बेहतर डील है कि अगर आप सिंगल डिनर के लिए जाते हैं 38 प्लस डॉलर्स. 7 से 12 तक के लिए अगेन अलग प्राइस, दैट्स 25 प्लस डॉलर्स. तो इस नेशनल डे पर पूरे फेस्टिव मंथ का मजा उठाइए, घर का किचन थोड़ा उसको आराम दे दीजिए, बर्तनों को परेड में भेज दीजिए और रॉयल फ्लेवर्स का मजा उठाइए. टेबल पहले से आप रिजर्व करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया तो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है.

0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी।
1: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: ggmart, योर पर्सनल ग्रोसर।
3: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
4: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं।
5: द RJ Academy एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
6: Namaste, bahno aur bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: सम सॉन्ग्स ये सिर्फ सुने नहीं जाते हैं, दिए जाते हैं जी, और फिर अचानक किसी कैफे में, किसी वेडिंग में, रेडियो पर ये बज जाते हैं और आपको कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि वाओ नॉस्टैल्जिया। पर ये नॉस्टैल्जिया मैं आज क्यों बता रही हूँ, नहीं मुझे लगा बताना चाहिए। और फिर एक गाना ऐसा है जिसके बारे में जो मैं बात करने वाली हूँ, अरे रे अरे ये क्या हुआ, सबने सुना होगा, यश चोपड़ा की एवरग्रीन। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, आय हाय हाय क्या बात है। इसका ये रोमांटिक मास्टरपीस जो है ना, अरे रे अरे ये क्या हुआ, इस पूरे फिल्म को, इस मास्टरपीस को 29 इयर्स हो गए हैं, लेकिन इसका जादू अभी भी बाकी है, फ्रेश लगता है। आप इसको देखो तो लगता है अभी तो बनी थी ये पिक्चर। आपको मालूम है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, म्यूजिक डायरेक्टर उत्तम सिंह ने इसकी ट्यून पर लगभग 6 महीने काम किया जी, और उसके बाद ही धुन तैयार हुई। लेकिन गाने का मैजिकल वर्ड उनको मिल ही नहीं रहा था, शब्द नहीं मिल रहे थे, धुन आ गई थी। फिर आए फ्रेम में द लेजेंडरी लिरिसिस्ट आनंद बख्शी साहब, उन्हें सिचुएशन सुनाई गई, उन्होंने सुनी, म्यूजिक सुना और बस थोड़ी देर के लिए बाहर गए और 10 मिनट में वापस आ गए लिख करके। एंड दैट आइकॉनिक सॉन्ग वाज अरे रे अरे ये क्या हुआ। मैंने ना ये जाना कि स्टोरी बन गई, लता मंगेशकर जी और उदित नारायण की आवाज में शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित पर पिक्चराइज, व्हाट अ केमिस्ट्री, और यश चोपड़ा का रोमांस, द कॉम्बिनेशन इज लेजेंडरी। वैसे आपकी प्लेलिस्ट में ऐसा कौन सा गाना है जो कितने भी साल पुराना हो जाए लेकिन सुनते आपको लगता है यार दिस इज नेवर ओल्ड एंड ओल्ड इज ऑलवेज गोल्ड, ये भी कमाल की बात होगी। मेरे लिए अरे रे अरे इज लाइक टाइमलेस गानों की लिस्ट में आता है, कुछ मेलोडीज की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। चलिए इसी नॉस्टैल्जिया को क्यों ना रिलिव कर लिया जाए विद दिस अमेजिंग ट्रैक फ्रॉम द मूवी दिल तो पागल है।
2: अरे रे अरे क्या हुआ, मैंने ना ये जाना,
1: अरे रे अरे ये क्या हुआ, किसी ने भी कुछ नहीं जाना।

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर, गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: कभी कभी नेचर भी ऐसे सरप्राइजेस देता है कि पहले लगता है हॉलीवुड की शूटिंग चल रही हो, बाद में पता लगता है अरे स्क्रिप्ट तो समंदर ने खुद ही लिखी है। सोचिए आप बीच पे वॉक करने निकले हैं, पूरा किनारा इलेक्ट्रिक ब्लू कलर के अजीबो गरीब फीचर से भरा हुआ है, आपको क्या लगेगा बाय गॉड व्हाट इज दिस। यूके के कुम्ब्रिया और वेल्स के बीचेस पर हाल कुछ ऐसा ही हुआ। हंड्रेड्स ऑफ ब्राइट ब्लू एलियन लाइक क्रिएचर्स जो हैं वो वॉश अप हुए पहले, है ना। पहली बार नजर में लोगों को लगा ये क्या है, इट्स लाइक अ रेयर काइंड ऑफ जेलीफिश। लेकिन एक्सपर्ट्स ने बताया कि ये विलेला विलेला यानी बाय द विंड सेलर्स, ये क्या होता है भगवान जाने, मैं आपको बताती हूँ। मजेदार बात ये है कि एक्चुअल जेलीफिश नहीं है, ये छोटी-छोटी ऑर्गेनिजम्स की कॉलोनीज होती हैं जो कि मिल करके एक सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह काम करती हैं। पूरी की पूरी कॉलोनी आई थी मतलब, लेकिन ऊपर एक छोटा सा ट्रांसपेरेंट सेल होता है इनके जो हवा के डायरेक्शन में उनको समुद्र के ऊपर ड्रिफ्ट करता रहता है। यूं और स्ट्रॉन्ग विंड्स जो हैं और हीट वेव की वजह से ये सारे जो हैं एक साथ बीच तक आ गए। और हाँ, दिखने में कितने भी ये इंस्टाग्राम वर्दी क्यों ना लग रहे हो, एक्सपर्ट्स ने वार्निंग दी है लुक बट डोंट टच प्लीज, है ना। इनका स्टिंग जो है वो मतलब पोर्चुगीज मानो वॉर जितना डेंजरस तो नहीं होता है, लेकिन इतना तो है कि आप इरिटेट हो जाएंगे, इरिटेटिंग और खुजली कर करके परेशान हो जाएंगे जी बहुत ज्यादा। जैसे अगर आप बीच पर जाएं और अचानक से आपको कोई ब्लू एलियंस टाइप कुछ दिख जाए तो

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: नेशनल डे सेलिब्रेशन की प्लानिंग चल रही है, तो इस बार सिर्फ मेमोरीज नहीं ब्रिलियंस भी घर लेकर आइए, क्योंकि हर कोई नेशनल डे पर कुछ ना कुछ अमेजिंग लेके आया है। व्हाई नॉट हमारा प्यारा जोया लुकास सिंगापुर के 61st नेशनल डे के मौके पर ना जोया लुकास लेकर के आए हैं वन नेशन इन फाइनाइट ब्रिलियंट सेलिब्रेशन। तो अगर आप डायमंड ज्वेलरी ऐसा कुछ खरीदने का प्लान बना रहे हैं और नहीं बना रहे तो बना लीजिए, क्योंकि 9% जीएसटी अब्सॉर्ब हो जाएगा आपके प्राइस पर। अब्सॉर्ब नहीं हुई ना ये बात, अब कर लो। हाँ, डायमंड ज्वेलरी परचेज अगर आप करते हैं तो आपको 9% का जीएसटी अब्सॉर्ब हो जाएगा आपकी खरीद पर। और अगर आप गोल्ड ज्वेलरी लवर हैं और आप सोना खरीदने आए हैं तो एक और खुशखबरी है आपके लिए, गोल्ड ज्वेलरी मेकिंग चार्जेस पर फ्लैट 30% का ऑफ है। चाहे आप गिफ्ट दे रहे हो, एनिवर्सरी आ रही हो, किसी की एंगेजमेंट हो या सिंगापुर के बर्थडे पर खुद ही खुद को गिफ्ट दे लीजिए, फर्क पड़ता है। नेशनल डे से बेटर क्या ओकेजन हो सकता है। ये स्पेशल इन स्टोर ऑफर वैलिड है 10th अगस्त तक, तो जल्दी करिए, देर मत करिए, अपने नियरेस्ट जोया लुकास के शोरूम पर जाइए और इस फेस्टिव ऑफर का लाभ उठाइए।

0: Looking for the perfect reason to buy jewelry? Well, this National Day, Joyalukkas gives you not one, but two compelling ones. Enjoy 9% GST absorbed on diamond jewelry and 30% off gold jewelry making charges. Beautiful designs, incredible value. Joyalukkas, the world's favorite jewelers. Now presenting One Nation Infinite Brilliance. Offer valid till 10th August only. Visit 412-320 and 134 Serangoon Road. Wishing one and all a happy and bright National Day. The Joyalukkas way.
1: Raaz ki baat batau. मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
2: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आर जे अकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and up.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: कभी कभी दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन इतना सिंपल होता है कि हम सोच ही नहीं पाते। और आज की जो ये स्टोरी है ना, वो बिल्कुल वैसी है। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ आपको अच्छा फील नहीं कराएगी, बल्कि इंसानियत पर आपका भरोसा वापस कायम करेगी। सो दिस इज द आर जहां पे आप कहते हैं ओह माय गॉश। फिनलैंड ने होमलेसनेस से लड़ने के लिए एक बहुत ही अलग सोच अपनाई है। नॉर्मली हम सोचते हैं कि पहले इंसान अपनी लाइफ ठीक करे, जॉब मिले, एडिक्शन छूटे, सब कुछ सेटल हो, तब घर मिले। लेकिन फिनलैंड ने कुछ और किया है। नहीं, सबसे पहले घर दो। ये जो मॉडल है इसका नाम है हाउसिंग फर्स्ट। यानी जिस इंसान के पास घर नहीं है, उसे सबसे पहले परमानेंट हाउस, होम दिया जाता है। उसके बाद उसकी काउंसलिंग होती है, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट, ये सब मदद स्टेप बाय स्टेप दी जाती है। पर सबसे पहले उसके सर पर एक छत, जहाँ पे वो सबसे पहले सेफ फील कर सके। रिजल्ट, होमलेसनेस ड्रामेटिकली कम हुई है और होगी ही भाई। इमरजेंसी शेल्टर्स, हॉस्पिटल्स और पुलिसिंग पर खर्च जो है

काफी कम हुआ है। और सबसे बड़ी बात, हजारों लोगों को सिर्फ एक छत नहीं मिली है, उनके लिए वो छत एक नई शुरुआत है, क्योंकि वो आपका अपना सेफ प्लेस है। कभी कभी किसी की लाइफ बदलने के लिए बड़े बड़े लेक्चर्स और थेरेपी वेरेपी नहीं चाहिए होती है, एक सेफ एड्रेस काफी होता है जहाँ पे वो खुद सेफली रह सके, कहीं से कुछ भी करके वापस घर आए, मतलब थेरेपी वेरेपी लेके वापस घर आए।

अब अगला गाना कुछ ऐसा ही हो जो आपके दिल को सुकून दे जाए, राइट? रेडियो मसी सिंगापुर का ये अगला ट्रैक आपके लिए, आप सुन रहे हैं मुग्धा को, स्टे ट्यून्ड।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
2: जीजी
0: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: समटाइम्स जब कोई गाना खत्म होता है और पता नहीं चलता कि आपके 3 घंटे कब निकल गए, तो पता क्या होता है, शो खत्म होता है। कुछ ऐसा ही अभी हुआ, मैं बातें करती गई एंड देन आई रियलाइज्ड, ओ माय गॉड, शो तो खत्म हो गया है, मस्ती हैंगआउट पर मेरा सफर तो आज फिलहाल यही खत्म हो रहा है। आज हमने साथ में काफी सारी बातें शेयर की, इंटरेस्टिंग कहानियां, बॉलीवुड की बातें, सिंगापुर के अपडेट्स एंड वर्ल्ड वाइड बहुत सारी अमेजिंग बातें जिसमें ब्लू एलियंस भी थे। अगर आपको लगता है कि माइक्रोफोन के इधर बैठना इज जस्ट लाइक आरजे बनने के लिए, तो क्या चाहिए, एक अच्छी आवाज काफी है। सो हैंग ऑन फॉर अ सेकेंड, मस्ती मीडिया नेटवर्क आपको सिर्फ आरजे बनने की ट्रेनिंग नहीं दे रहा है, ये मैं हर बार बताती हूँ। जब हमारी वेबसाइट पे जाएंगे ना, मस्ती मीडिया नेटवर्क के आरजे एकेडमी पर, यू विल गेट टू नो कि हम यहाँ पे आपको काफी कुछ बनने के प्रोसेस में लेकर जाते हैं। आप अपना खुद का पॉडकास्ट शुरू कर सकते हैं, आप एक प्रेजेंटर बन सकते हैं, आप इवेंट्स होस्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली कंटेंट क्रिएटर, स्क्रिप्ट राइटर, कंटेंट डेवलपर, ये सब कुछ बनने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हम यहाँ पर देते हैं मस्ती मीडिया नेटवर्क की इस एकेडमी में। तो आपको लगता है अगर कि सिर्फ माइक के इधर बैठ के बोल देंगे और आरजे बनने का हम सिखा दे रहे हैं, काम तो नहीं, आरजे बनने के पीछे भी इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। मैं यहाँ पर कोई मुझे लिख के थोड़ी देता है स्क्रिप्ट की मैंने लिखी और पढ़ी और बोल दी, नो भाई, आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च वर्क। आप तक हर एक न्यूज लाने के लिए हर एक शब्द को कितना तौल कर बोलना पड़ता है, कहीं कोई गलत बात निकल गई तो ये सब कुछ बोलते वक्त सोचना पड़ता है, एंड देन अगर निकल गई तो मुंह से निकले शब्द वापस नहीं आते। सो देयर सो मच वी मेक यू लर्न, हम आपको सिखाते हैं, वी टीच यू, और उसके बाद आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जिस भी लाइन में जाए आप अपना बेस्ट देकर आए। Not just be an RJ, आप कुछ भी बन सकते हैं। We have flexible learning, regular reviews, experienced industry mentors. क्या चाहिए आपको बताइए? ये सब हम इसलिए करते हैं ताकि आपकी जो communication और creativity है उसको हम next level पर लेकर जाएं। तो अगर आपके पास ideas हैं, बस उन्हें एक आवाज और structure देना बाकी है, yes, we are here for you. आपको सिर्फ एक छोटा इंट्रोडक्शन लिखना है info@radiomasi.com.sg पर, इसको इंट्रो को लिखकर भेज दीजिए, मेल करिए। तब तक के लिए अगर आप मस्ती मीडिया नेटवर्क के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप मस्ती मीडिया नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं, हमारे पेज पे आ सकते हैं, एडमिशन्स ऑलरेडी ओपन है। फिलहाल बाय-बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनों का ख्याल रखिए, लेकिन लाइफ का वॉल्यूम हमेशा पॉजिटिवली हाई रखिएगा, ओके? और ये मुझे किसी ने लिखकर नहीं दिया था, समझे?

0: पहुंचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: दूध उबालोगे, दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी।

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।
2: चाहिए आप बोलो हम बनाएंगे, चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन, ऑल इज वेल। आपकी प्लेलिस्ट, आपकी मस्ती, व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151893 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
3: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।
1: की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। योर डेली स्कूप ऑफ व्हाट्स हॉट, व्हाट्स वायरल एंड व्हाट्स वर्थ नोइंग, सर्व्ड फ्रेश विद ग्रेट म्यूजिक एंड माय अनबीटेबल चार्म। यू सी, tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara, har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti 24/7 live par।

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
0: चेक इट आउट

0: नाचने का मन है?
1: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.
3: Your Musti Music Cafe is open. Freshly brewed beats

0: पहुंचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
2: चेक इट आउट.

वेलकम टू योर चिल जोन, मस्ती म्यूजिक कैफे, ओनली म्यूजिक, ओनली मस्ती।

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: Your Masti Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वी're ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
2: पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
0: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।
3: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
0: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे, कैफे, कैफे, कैफे।

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
1: आई लव यू रसना।
0: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards only on Radio Mercy 24/7 Live.
2: Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats.

0: पहुंचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे। फिलहाल तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: दस का बीस, दस का बीस, दस का बीस, दस।
3: अरे अरे, अब बस दस से दिल कहाँ भरेगा।
1: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है।
4: टाइम टू रेज द बार। रम्मा मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक, फुल ऑन रेणुका स्टाइल।
1: Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters. Josh Mehra.
5: Some shows don't just play, they stay with you. And when our listeners ask for more, we bring them back. Encore shows by popular demand. Relive the music, the moments, the magic. Only on Radio Masti 24/7. Check the app menu for encore show timings.
6: Radio Masti 24/7 Live, a part of Masti Media Network Singapore.

0: आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर

0: Radio Musty 24/7. Download Radio Musty 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
1: भूख लगी जोरों की भूख लगी। मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: का पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।

0: Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज करें.
1: हाँ जी हाँ जी, 5 बजकर हो चुके हैं 5 मिनट. दैट इज राइट. और टुकुर टुकुर करके जो ये सोचते हैं और देखते हैं कि यहाँ हम कहाँ देखे, टाइम कितना बच गया है. कई लोगों के लिए अलार्म क्लॉक तो मैं ही हूँ. इस वक्त अगर अंतरा की आवाज आ रही है, इसका मतलब घड़ी में 5 तो बज ही गए होंगे. और अगर 6-7 बजे के आसपास आ रही होगी तो ना, अच्छा इन तीनों में से कोई तो एक होगा ही होगा. नहीं, रेडियो मस्ती 24/7 पर मैं हूँ अंतरा, यहाँ पर आपके साथ मिड वीक ब्लूज बिल्कुल शुरू हो चुका है. मैं तो हर बार हर वेंसडे को आकर यही कहती हूँ कि ब्लूज कौन से वाले ब्लूज यू आर टॉकिंग अबाउट. आई डोंट थिंक सो हमको वेंसडे को इतना ज्यादा ब्लूज वाली फीलिंग आती होगी. और आज तो और भी ज्यादा नहीं आएगी क्योंकि सबको नजर आ रहा है लॉन्ग वीकेंड. यस, नेशनल डे वाला लॉन्ग वीकेंड, जहां पर मंडे, आई मीन दिस इज़न्ट इट द बेस्ट थिंग. जब आपको पता हो संडे शाम वाली जो फील है, जहां पे हम लोग मंडे के टाइम टेबल में ऑलरेडी एंटर कर जाते हैं, बट देन यू रियलाइज कि भाई हमें मंडे को भी छुट्टी है, सुबह सुबह नहीं उठना है, अपना रूटीन वाला जो करते हैं वो नहीं करना है, आज हम चिल करेंगे, हमें ऑफिस नहीं जाना है. ओ माय गॉड, इतने लकी सिर्फ आप ही हो सकते हो, क्योंकि हम तो नौकरी करने आएंगे ही उस दिन, मतलब जैसे कि हम हमेशा कहते हैं. या लेकिन उस बात को सोचकर हमारे लिए एवरीथिंग रिमेन्स काइंड ऑफ नॉर्मल ओनली, है ना. तो फिर वेल, उस दुखती रखते नहीं हाथ रखते हुए वापस आते हैं वेंसडे वाले दिन, जहां से हमें प्यारा प्यारा वीकेंड, बिल्कुल लॉन्ग वीकेंड जस्ट प्लेस नजर आ रहा है. एंड इसी के साथ साथ हमारा ये 5 से 8 वाला जो ये सफर है, इट इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली अमेजिंग. Because khabron ke saath saath there are a lot of other things I gotta tell you, and also I gotta play all the nice songs so that hamara mahol and mood dono masti bhara rahe. So yes, let's go for it. Yahan pe badhte hue aage hum dono yu mile. Gaane ka naam kuch aisa hi. Coming up next on Radio Masti 24/7 Live. Good evening.

0: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: ये रात तो अपनी है, पर एक ख्याल किसका है?
2: तुमको लेकर
1: ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है?
3: मुझे चांद पे ले चलो,
1: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू
4: रात अकेले है।
5: जोश में रहो।
6: Every celebration begins around a table. And this August, Singapore's biggest celebration deserves a feast to match.
7: Happy National Day, Singapore!
6: And let's get together on 9th August for a special National Day buffet from only $58 plus, complete with a live Prata station, Singapore-style chicken curry, succulent kebabs, royal curries, and irresistible Indian desserts. Celebrate, indulge, and say Happy National Day, Singapore, over a royal feast. Shahi Maharani North Indian Restaurant. Reserve your table today. Log on to www.shahimaharani.com.
8: Take a break, laugh a little, and vibe a lot because weekend is almost here. Midweek Blues on Radio Masti 24/7. Aao, mood change kare.
9: राणा जी, क्या हम भी माफ नहीं करेंगे? ऐसा हमने सोचा था, लेकिन ममता कुलकर्णी वांट्स टू सोचोफाई अ लिटिल डिफरेंट। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतराब के साथ और यहाँ पर चल रहा है मिडवीक ब्लूज। भाई, क्या है कि ये रिक्रिएटेड गानों का जमाना जो है वो चलता हुआ जा रहा है। कोई भी गाना आजकल पुराना उठाते हैं और उसको रिक्रिएट कर देते हैं, विच इज ओके। अगर अच्छा रिक्रिएट किया तो लगता है कि बहुत अच्छी बात है, विच हैपेंड विद धुरंधर बाय द वे। बट जैसे ही लगता है कि यार इसको तुमने टच नहीं करना चाहिए था, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो रिक्रिएटेड वर्जन हमारे गले से तो नहीं ही उतरा है। सो वेल, हाल ही में एक गाना रिलीज हुआ। नाउ दिस इज वन गाना वी हैव लव्ड इट। सी, हर जॉनरा के अपनी अपनी पसंदें होती है, ठीक है। एक वो जॉनरा है जहां पे हम आइटम सॉन्ग्स की बात करते हैं, जहां पे मतलब जब पार्टियां होती है तो एक टाइम के बाद ये गाने चलते हैं और हम होते हैं एकदम बिंदास, फुल ऑन उस पे डांस करने वाले। सो वन ऑफ दो सॉन्ग्स ओके वाज गुपचुप गुपचुप गुपचुप गुपचुप छत पर सोया था ना, आई नो मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। ममता कुलकर्णी वाज डांसिंग, दिस वाज करण अर्जुन एंड अमरीश पुरी जी। ओ माय गॉड, उनकी बड़ी बड़ी आंखें, आई जस्ट कैन नॉट फॉरगेट। आई कैन सी द सिनेरियो ऑफ द गाना राइट इन फ्रंट ऑफ माय आईज बिकॉज माय ब्रेन वर्क्स लाइक दैट। सो वेल, बड़ा ही पॉपुलर हुआ था ये गाना एंड टिल डेट कानपुर, हरियाणा, इन सब जगहों पे कई बार शादियों में ये गाना जोर जोर से चल रहा होता है। बट देन इट हैज got its own thing, इतना original, इतना authentic and एक मसालेदार जो है वो पेशकश थी उस टाइम की। तो भाई माहिरा शर्मा जो है उन पे वीडियो ये बिल्कुल किया गया and राणा जी 2.0 इसको रिक्रिएट किया गया। ये गाना सामने जब लोगों ने देखा तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे माहिरा, क्योंकि ये गाना छूना नहीं चाहिए था। भाई, वो सिर्फ गाने पे डांस कर रही है। सो बेसिकली लोगों ने उस बंदी को कंपेयर किया ममता कुलकर्णी के साथ एंड एवरीबडी वाज लाइक ओरिजिनल तो ओरिजिनल होती है, उसको मतलब आप इस तरह से तो रिप्लेस, मतलब व्हाट आर यू डूइंग। काफी बैकलैश बेचारी ने जो है वो फेस किया इसकी वजह से एंड दैट इज अवेयर ऑफकोर्स एवरीबडी वेंट बैक टू ममता कुलकर्णी जी कि आप बताएं आपको कैसा लग रहा है, आप कुछ कहें इस बारे में। शी And I'm so glad she did, okay? She really praised Mahira Sharma ki performance in Rana Ji 2.0. She said that she has done a good job. Jab maine kiya tha, to maine bhi, I also faced a backlash that, you know, is industry mein agar tumko heroine banke rehna hai, to you should not do these numbers and all those things. But I still did it because I thought that is the correct move for me. I was just taking it as work, right? And of course, she did very well. So, aaj ke hisab se, I think Mahira has done a fabulous job and I am completely and very, very proud of her for doing so. भाई, जब एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं ना लोग, तो दुनिया का मुंह हो जाता है बंद एंड दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट शुड बी डन। गुड इवनिंग।

0: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
1: Check it out.
2: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा. मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है. टाइम टू रेज द बार. मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल. Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.
3: Looking for the perfect reason to buy jewelry? Well, this National Day, Joya Lucas gives you not one, but two compelling ones. Enjoy 9% GST absorbed on diamond jewelry and 30% off gold jewelry making charges. Beautiful designs, incredible value. Joya Lucas, the world's favorite jewelers. Now presenting One Nation Infinite Brilliance. Offer valid till 10th August only. Visit 412-320 and 134 Serangoon Road. Wishing one and all a happy and bright National Day. The Joya Lucas way.
4: See you soon.
5: Traffic update.
2: वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर. जी हाँ, ट्रैफिक अपडेट का टाइम हो चुका है. 5:33 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में. हैवी ट्रैफिक आपको इस वक्त मिलेगा ऑन PIE टुवर्ड्स चांगी एट KPE एग्जिट. हैवी ट्रैफिक की खबर ऑन CTE टुवर्ड्स SLE बिटवीन AMK एवेन्यू 3 एंड PIE चांगी. व्हीकल ब्रेकडाउन मिलेगा ऑन ECP टुवर्ड्स चांगी एट KPE TPE एग्जिट. सो वेल, ये था इस घंटे का ट्रैफिक अपडेट. कमिंग अप नेक्स्ट इज अरिजीत सिंह की आवाज में फ्रॉम द मूवी डियर जिंदगी. अ ब्यूटिफुल नंबर फॉर यू, सिर्फ आपके लिए.

0: Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज कर चेंज कर चेंज.
1: And I agree with Yash Raj Films. We need to support more and more independent artists. Bhai, aur music aana chahiye. Ye to main bilkul manti hoon. Radio Masti 24/7 live. Antra aapke saath 5:37 yahan par studio clock mein. Midweek blues. No blues, but definitely we are here. Yash Raj Films is known for it's a good production house. Yash Raj Films mein bahut achhi achhi jo hai movies produce zarur ki hai. But now kya hai ki ab they have entered independent म्यूजिक का स्पेस. इन्होंने लॉन्च किया है राह रिकॉर्ड्स. ओके, एक नया लेबल फोकस्ड ऑन डिस्कवरिंग एंड डेवलपिंग एंड सपोर्टिंग ओरिजिनल आर्टिस्ट्स. एंड द कंपनी सेज अभी कि द इनिशिएटिव इज डिजाइन टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म आर्टिस्ट का डेवलपमेंट रादर देन ऑपरेट एज अ ट्रेडिशनल रिलीज ड्रिवन रिकॉर्ड लेबल. बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है. देखिए, टैलेंट की तो कोई कमी है नहीं हिंदुस्तान में, इतना तो मैं बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ. व्हेनेवर आई वॉच these singing reality shows and everything, which is like more when I go back to Kanpur, and my mom is totally into it. She watches the Bangla singing reality shows, also the Hindi ones, so she keeps me up to date. Aur hum log saath mein hote hai, toh we both watch it together, and we also matlab pura hota na family ka scene jab aap apne mummy ke saath hote ho to are isne acha nahi gaya, thoda sa better kar sakta tha. Hum ghar baithe baithe judge bane hue hain. Gaane ka gab hi nahi aata hai mujhe, hai na. Gaane ko bolo तो बहुत ही मेरी, आप तो जानती हूँ आपसे क्या ही छुपा हुआ है. बट वेल, कमिंग बैक टू द ओरिजिनल स्टोरी ऑफ दिस, यश राज फिल्म्स जो है वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल भी कमर्शियल इसमें नहीं होगा. इतने सारे ये जो टैलेंटेड बच्चे हैं, दे शुड गेट दैट स्पेस. आई अग्री, बट देन Also the fact that they are Yash Raj Films. जितना बड़ा बैनर ना, और जब जब ये लोग बोलते हैं कि इसमें कोई कमर्शियल एंगल नहीं है, तब तक मुझे पता नहीं क्यों नहीं यकीन सा नहीं होता. बट ओके, ठीक है, इफ यू से सो. हम भी सोचेंगे कि चकाचक है ही सब मामला. आई होप इट इज लाइक दैट. जैसे कि ये बोल रहे हैं रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर, टोटली अतरंगी फील करती हुई, बट अतरंगी रे से ये गाना चलाती हुई, गुड इवनिंग.

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।
2: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
3: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
2: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
3: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
4: जीजी
3: कृषि वल नट्स, ओनली ऑन GGMartOnline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए GGMartOnline.com।
4: GGMart, योर पर्सनल ग्रोसर।
5: Take a break, laugh a little, and vibe a lot, because weekend is almost here. Midweek Blues on Radio Masti 24/7. Aao, mood change kare.
6: That's right. अगर आपको इन नट्स का बिल्कुल नट हो जाना है और फायदा उठाना है तो एक और जगह आप जा सकते हो। Let me tell you that Radio Masti 24/7 Live पर आंतरिक के साथ और यहाँ पे चल रहा है Midweek Blues। भाई जीजी मार्ट का क्रिशुअल नट्स, which we have been talking about so long, right? Fair price, नाम तो सुना होगा। Of course सुना है, गए भी हुए हैं एंड जाते रहते हैं। So NTUC Fair Price का एक ज्वाइंट रोड शो होने वाला है 17th to 23rd August तक, ठीक है। क्रिशुअल के ये नट्स विच आर लाइक क्लास अपार्ट, ओके। सिटी स्क्वायर मॉल पर आपने जाना है। क्रिशुअल के ये नट्स जो है, जो कि जीजी मार्ट पे भी मिलते हैं ऑनलाइन, वो वहां पे जाके आप सैंपल कर सकते हो, आप खा सकते हो, ट्राई कर सकते हो, खरीद भी सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, एक बार आपने खरीद लिया तो आप वापस जाओगे GGMartOnline.com पर और वहां जाकर उसको दोबारा से ऑर्डर करोगे। एक तो प्रीमियम क्वालिटी, इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर्स या प्रिजर्वेटिव्स नहीं। दे आर वेरी मच रिच इन प्रोटीन एंड फाइबर एंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बीइंग गिवन द फैक्ट दैट आजकल हम लोग बहुत ज्यादा हेल्दी हो चुके हैं, है ना। तो व्हाई नॉट इंडल्ज इन नेचर्स बेस्ट एंड फाइनेस्ट। याद रखना जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। यस, GGMartOnline.com पर यू कैन आल्सो चेक आउट कृषिवल के नट्स। इट इज जस्ट इररेसिस्टिबल, एब्सोल्युटली। चाहे वो कैश्यूज हो, और कैश्यूज में भी इनमें काफी वैरायटीज है। सॉल्टेड है, फिर उसके बाद प्लेन है, उसके बाद चिली कैश्यूज है, एंड असॉर्टेड कैश्यूज है, मतलब सारे मिक्स, ड्राइड क्रैनबेरी कहाँ मिलेगा आपको। और जब जब ऐसी चीजें होंगी हमने आपको बताना है। सिटी स्क्वायर मॉल 17th to 23rd August के बीच में आप जाएंगे तो बिल्कुल फेयर प्राइस के इस जॉइंट रोड शो में कृषि वर्ल्ड के नट्स को पाएंगे। यम्मी।

0: ऐसा पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।

0: Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज कर चेंज कर चेंज.
1: आप कभी एयरपोर्ट पे दौड़ते भागते हुए शाहरुख खान वाला मोमेंट फील किया है आपने कि बस पहुंच जाओ टाइम से बोर्डिंग गेट तक? रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मिडवीक ब्लूज चल रहे हैं यहाँ पर. जी हाँ, वेंसडे पहुंच गए, लॉन्ग वीकेंड आने वाला है, आप खुशी बिल्कुल मना सकते हो. बट 6 बजे के उस पार पहुंच चुके हैं, 6:05 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक पे. भाई मेरे साथ हो चुका है, मैं जब तक मैं अच्छा, एक तो इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि हम लोग इतना टाइम लेके चलेंगे तो इस टाइम पर तो पहुंच ही जाएंगे, बट थोड़ा सा टाइम का ऊपर नीचे हो गया अनएक्सपेक्टेडली और बिल्कुल एकदम डॉट ऑन डॉट टू डॉट टाइम पे मैं पहुंची. फटाफट से मैंने अपना बोर्डिंग पास उठाया एंड फिर पता चला कि मेरा गेट, बोर्डिंग गेट काफी दूर है. लाइक इट्स अ 10-15 मिनट्स वॉक. पता नहीं मैंने क्या ही सोचा, भाई ट्रेन ले सकती थी मैं. भाई सिंगापुर चांगे एयरपोर्ट वी आर टॉकिंग अबाउट, सब कुछ सारी फैसिलिटीज वहां पे अवेलेबल, थोड़ा सा अगर दिमाग लगा लो. लेकिन जब आप पैनिक मोड में चले जाते हो, मुझे लगा कि हम तो दौड़ते हुए ज्यादा जल्दी पहुंचेंगे. ट्रॉली में सामान रखा और जो भागी हुए, ओ माई गॉड, आई जस्ट के नॉट फॉरगेट. अचानक से याद आया, सो टेक्नोलॉजी इज मूविंग सो फास्ट राइट, जस्ट लाइक आई डिड दैट डे. बट देन कभी कभी वो सिर्फ कूल नहीं होती, इट एक्चुअली मेक्स लाइफ इजियर. अब इमेजिन कीजिए आप चांगे एयरपोर्ट पे हो, you have got this long walk just like I was telling you to your gate, ya kisi elderly family member ke sath aap travel kar rahe hain. So instead of waiting for someone to push a wheelchair, the wheelchair itself takes you to your destination. That's right, Changi Airport jo hai, they have started rolling out this autonomous wheelchairs jo hai for passengers who need mobility ka assistance. You simply enter your destination, fasten the seat belt, and wheelchair safely jo hai navigate kar jata hai through the terminal on its like own using the sensors. Once it drops the passenger off, it automatically returns to the charging station for the next user. And that is so mind-blowingly cool. I mean, seriously. So, safety ka bhi koi tension nahi hai. These smart wheelchairs come with a seat belt that must be secured before the movement. Emergency stop button bhi hai usme, and assistance call function bhi hai agar help required hai. They are designed to make traveling more independent and comfortable, especially for seniors and passengers jinko thoda sa mobility wagera ka issue hai. मुझे लगता है टेक्नोलॉजी का बेस्ट यूज वही है जब वो कन्वीनियंस के साथ डिग्निटी भी दे, बिकॉज एवरीवन डिजर्व्स टू ट्रैवल विद कॉन्फिडेंस एंड कंफर्ट, राइट? और थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंडिपेंडेंस, nobody is going to mind it. Singapore really, really keeps finding new ways to make travel smarter, and no wonder Changi Airport always comes first in everything. Bhai, dekh lo, just soch dekho what they're implementing, wo dekho. I mean, it's just mind blowing. Too much. Love you, Singapore. Love you, Changi, and love you, Zindagi. Coming up next. Good evening.

0: Take a break, laugh a little, and vibe a lot because weekend is almost here. Midweek Blues on Radio Masti 24/7. Aao, mood change kare.
1: That's right, 6:00 हो चुके हैं 17 मिनट, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतराब के साथ और यहाँ चल रहा है मिडवीक ब्लूज। कभी कभी ना दुनिया के किसी और कोने से ऐसी खबर आती है कि जो दिल में अलग ही आपको फील देकर जाती है। नाउ ऑफ कोर्स एज इंडिया इज गेटिंग रेडी टू सेलिब्रेट उनका अपना इंडिपेंडेंस डे, द यूएस स्टेट ऑफ मैसाचुसेट्स जो है एंड द सिटी ऑफ बोस्टन, दे हैव ऑफिशियली प्रोक्लेम्ड 15 अगस्त को एज इंडिया डे एंड इट्स अ जेस्चर रिकॉग्नाइजिंग नॉट जस्ट इंडियाज इंडिपेंडेंस बट ऑल्सो द इनक्रेडिबल कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी। हेल्थ केयर से लेकर साइंस टू टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, बिजनेस एंड पब्लिक सर्विस, इंडियन डायस्पोरा जो हैज प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग कम्युनिटीज अक्रॉस मैसाचुसेट्स एंड द प्रोक्लेमेशन ऑल्सो celebrates India ka democratic values and acknowledges the strong cultural ties between the two countries. Ab what's even more special is that the announcement also welcomed the opening of the new consulate in Boston and highlight kiya the visit of INS Sudarshini during ye celebrations. Another symbol of growing friendship between India and the United States. बट सच कहूँ जब इंडियंस दुनिया के किसी भी कोने में अपनी मेहनत, अपनी वैल्यूज, अपनी कल्चर से पहचान बनाते हैं ना, तो वो सिर्फ उनकी नहीं, हम सबकी ही अचीवमेंट लगती है। व्हेन वी डू समथिंग ओवर हियर, आई कैन नॉट टेल यू हाउ प्राउड माय पेरेंट्स, माय डैड यूज्ड टू फील, माय मॉम स्टिल फील्स। इट्स जस्ट so so good to know that, the proud moment for every Indian, no matter where you call home, right? Radio Mast, I think it's just the national day in me talking, because not only India is my home, Singapore is also my home, so well, it's just that overwhelming nice feeling of being janmabhoomi aur karmabhoomi dono ko hi apna ghar bulate hue. Hi ji ha, chaliye isi baat pe let's do some rock and roll, sorry, let's go.

0: for the perfect reason to buy jewelry? Well, this National Day, Joyalukkas gives you not one, but two compelling ones. Enjoy 9% GST absorbed on diamond jewelry and 30% off gold jewelry making charges. Beautiful designs, incredible value. Joyalukkas, the world's favorite jewelers. Now presenting One Nation Infinite Brilliance. Offer valid till 10th August only. Visit 412 320 and 134 Serangoon Road. Wishing one and all a happy and bright National Day. The Joyalukkas way.
1: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ। जोश में रहो।
3: बाजू।
2: ट्रैफिक अपडेट।
4: It's 6:28 by the studio clock, Radio Masti 24/7 live, but time for traffic update. Vehicle breakdown aapko is waqt milega on SLE towards BKE after Ishun. Accident ki khabar hai ek on PIE towards Changi after Pasir Laba. Avoid kare lane number 1. Aur vehicle breakdown aapko milega on PIE towards Changi after Stevens Road. So yeh tha is ghante ka traffic update. Main Hansra aapke saath bilkul rahungi 8 baje tak. Lekin filhal Badshahon ke soundtrack se coming up next, Zubeen Nautiyal and Neeti Mohan ki awaaz mein ye wala gaana.
5: आइए सुनते हैं बिना रैप वाला रीमिक्स।

0: Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज कर चेंज कर चेंज.
1: हाँ जी हाँ जी, जब नेशनल डे की इतनी सारी बातें हो रही है तो कुछ एक शाही बात भी हो जाए. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंतराव के साथ, और वो ये कह रही है कि भाई सिंगापुर का बर्थडे आने ही वाला है एंड सेलिब्रेशंस अगर शाही ना हो तो मजा ही क्या. सो वेल, दिस अगस्त पूरा का पूरा महीना शाही महारान नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट लेकर आया है दो शानदार रीजंस अपने लव्ड वंस के साथ सेलिब्रेट करने के लिए. सो सबसे पहले तो पूरे अगस्त के लिए वीकडे लंच बुफे फॉर टू सिर्फ $61 प्लस में. यूजुअली वहां पे ये $68 प्लस मिलता है, बट इट्स नेशनल डे सो ऑफ कोर्स समथिंग स्पेशल हैज टू बी डन. सो मंडे टू फ्राइडे दोपहर के 12 बजे से 2:30 बजे तक, और अगर आप खुद अकेले सिंगल आ रहे हैं तो सिर्फ $38 प्लस में, एंड बचे $25 प्लस. परफेक्ट एक्सक्यूज फॉर अ फैमिली लंच या फिर ऑफिस आउटिंग. और 9th अगस्त सिंगापुर के नेशनल डे के लिए वो भी प्लान मैं बना के देती हूँ ना. बाहर जहां तो बनता ही बनता है, फीस्ट तो बनता ही बनता है. अ लाविश नेशनल डे लंच बुफे एट जस्ट $58 प्लस पर अडल्ट एंड $40 प्लस पर चाइल्ड एंड 7 से नीचे उम्र वाले बच्चे एब्सोल्युटली फ्री. हाईलाइट एक स्पेशल पराठा स्टेशन जो है सर्विंग क्रिस्पी पराठा विद डिलिशियस लोकल स्टाइल जो है चिकन करी अलोंग विद ऑफ कोर्स द स्प्रेड ऑफ दैट ऑथेंटिक नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स जो आप शाही महारानी में जाके रिलिश करते आए हो. फेस्टिव ट्रीट्स हो गए, उनका स्पेशल मेन्यू फॉर द लिटिल वंस वो भी आपको चेकआउट करना बिल्कुल बनता है. सो दिस नेशनल डे सिर्फ पेट ही नहीं दिल भी भर जाएगा. एक्चुअली दिल भी नहीं भरेगा, एटलीस्ट मेरा नहीं भरता है. एवरी सिंगल टाइम आई गो टू शाही महारानी एंड आई एंड अप ईटिंग सो मच बिकॉज आई लव देयर फूड. सो आज ही अपना टेबल वो है शाही महारानी नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट रैफल्स सिटी शॉपिंग सेंटर पर रिजर्व कराए 6235-8840. दिस नेशनल डे लेट्स स्टे मजला सिंगापुर साथ साथ में लेकिन द शाही वे.
2: Every celebration begins around a table. And this August, Singapore's biggest celebration deserves a feast to match.
3: Happy National Day, Singapore!
2: And let's get together on 9th August for a special National Day buffet from only $58 plus, complete with a live prata station, Singapore-style chicken curry, succulent kebabs, royal curries, and irresistible Indian desserts. Celebrate, indulge, and say Happy National Day, Singapore, over a royal feast. Shahi Maharani North Indian Restaurant. Reserve your table today. Log on to www.shahimaharani.com.

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी।
0: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
3: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
4: हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत ये मिलता है, यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़।
5: दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
6: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप।
7: Take a break, laugh a little, and vibe a lot because weekend is almost here. Midweek Blues on Radio Masti 24/7. Aao, mood change kare.
4: I tell you, I can't agree more with this study. I mean, I'm sure that even after listening to this, now, aap bhi mere saath ekdam bologe, chalo, vacation chalte hain. Radio Masti 24/7 live Antrop ke saath, and yes, midweek blues aur bhi ho jayenge is bare mein sochte. Yep. So ek nayi study hai which actually suggests that workers jo hai, jo office wagera ye sari cheeze karte, should take a vacation every 2 months to properly recover from the stress and avoid burnout. So ye jo findings hai wo ek research paper mein aayi hai, it's called maximizing recovery, the superiority of frequent vacations, and it suggests that short frequent getaways jo hai may actually be more effective than saving all your time off for one long annual trip. Study ye argument deta hai that regular breaks जो है हेल्प पीपल मेंटली डिस्कनेक्ट फ्रॉम वर्क, रिचार्ज फास्टर एंड मेंटेन बेटर इमोशनल वेलबींग ओवर टाइम, एंड इट ऑल्सो फाउंड दैट द बेनिफिट्स ऑफ अ वेकेशन कैन फेड within weeks of returning to work, meaning regular breaks jo hai could be the key to protecting both aapki productivity and mental health as well. And I'm like yes, of course, give me those breaks, my love. Give me those breaks. But then, सच्चाई से जो है अपना रूबरू काफी कनेक्ट मेरा काफी ज्यादा है रियलिटी से. सुनने में ये जितना अच्छा लग रहा है, एग्जीक्यूट करने में वो इतना ही डिफिकल्ट. बट इट्स नॉट दैट एज वेल. आई नो पीपल कि जैसे ही सिंगापुर का ये जो वो वाला पोस्ट नहीं आता है कि भाई इस साल के लॉन्ग वीकेंड ये है भाई, एंड देयर समवन इन आवर ऑफिस एज वेल, तो वो सारे उसके अगले साल तक के सारे ट्रिप्स प्लान्ड होते हैं. आई मीन जितनी दूर तक का फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं वो भी कर रहे होते हैं, हुआ रहता है. एंड आई रियली एडमायर दीज पीपल. ओके, दिस इज प्लानिंग टू द नेक्स्ट लेवल ऑल टुगेदर. आई एम नॉट वन ऑफ दोज, बट देन या हर 2 महीने में एक ब्रेक, हाउ फैंसी, हाउ गुड. इट्स अ लग्जरी पीपल, इट्स अ लग्जरी फॉर मी. बट बनता है यार, वेकेशन तो बनता है. क्या बोलते हो, डाल दो छुट्टी. कई काफी दिन हो गए ना मुझे, तो एक बीच में छोटा सा वेकेशन तो बनता है. आप बोलोगे तो मैं छुट्टी डालूंगी, है ना, बोलना पड़ेगा. फिर मैं बोलूंगी कि सबने इतना इंसिस्ट किया, मैं मना ही कैसे कर सकती थी, है ना. वो तो मैं मासूम, आपको तो पता ही है. गाना सुने.

0: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
1: Guess which movie is almost ready to get released? एक ऐसा कुछ जो कि आपको 90s की याद दिला देगा. Oh my god, I can't believe that I am talking about this, but well, of course, कल 90s mixtape वाला दिन तो है ही, but ऐसी खबरें जब आ ही जाती है और ऐसे दिन पे आ जाती है तो इसको कैसे resist कर सकते हैं हम लोग. So I know you want to know, but then let me hold on to it a little longer. कर सकते हैं ना, ठीक है. ये घंटा करते हैं wrap up with a beautiful number and then let me come back 7 बजे के उस पार आकर बताती हूँ कि कौन से मूवी की यहाँ पर बात कर रही हूँ. And definitely I am quite looking forward to it, but not sure that how well it is going to do. Let's see. But आपके लिए stay tuned to Radio Masti 24/7 Live. कहीं मत जाइए.

0: अच्छा पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।

0: Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज कर चेंज कर चेंज कर चेंज
1: हो मैंने मोहलिया अल्लाहमिया why am I singing? Okay, don't sing Antra. Radio Masi 24/7 live पर Antra आपके साथ यहाँ पे 7 बजे उस पार पहुँच चुके हैं. Wednesday almost खत्म type feeling आने लगती है. 7 बजे के उस पार तो हो ही जाती है और जब मैं इसके बाद जिम जाऊँगी उसके बाद और भी ज़्यादा आएगी अगर तुम्हें जा पाई तो. But then yeah, वो let us not get into it. हाँ जी, तो भाई हम पिछले घंटे में आपको बता के गए थे कि एक 90s क्वालिफाइब लेते हुए व्हेन वी टॉक अबाउट सूरज परजात्या, ओके, व्हेन वी टेक द नेम प्रेम, ओके, इट गिव्स अस सो मच ऑफ 90s वाला वाइब, है ना. एंड आइकॉनिक कैरेक्टर ऑफ प्रेम, इट्स गोइंग टू रिटर्न 12 साल के बाद. सो सूरज परजात्या जो है, ही हैज रैप्ड अप द शूट फॉर ये प्रेम मोहलिया. यस, इसमें आपको नजर आएंगे आयुष्मान खुराना के साथ शर्वरी. सुराची प्रोडक्शंस एंड महावीर जैन फिल्म्स जो है, दे हैव ऑफिशियली रैप्ड अप द प्रिंसिपल फोटोग्राफी ऑफ देयर अपकमिंग बिग स्क्रीन फैमिली एंटरटेनमेंट ये प्रेम मोहलिया. एंड इट्स स्केड्यूल्ड टू रिलीज इस साल November 27th को. अब देखो, बात ये है कि सी वी हैव अ सर्टन नॉस्टैल्जिया attached to when we talk about Parjatya sahab, then we think about hum aapke hai kaun, hum saath saath hai, theek hai. Aaj ki date mein aap kisi ko bhi dikhaoge to wo kahega kitna cringe hai. There is a certain section of people who say that bhaiya kaise tumne dekh liya, itna cheesy hai, itna zyada ye. Hello, it's okay. I love that cheesy. I love that cringe. I love hum aapke hai kaun. I love hum saath saath hai. I love jal piyenge. The vipa. Sahi acha lagta hai. It's a nice thing. But now getting that vibe आज के टाइम पे थोड़ा बहुत तो उसमें आई एम श्योर दे विल ऑल्सो थिंक, पता नहीं उनका थॉट प्रोसेस क्या होगा कि वही वाला मैजिक वापस लाएंगे या फिर आज के ज़माने का थोड़ा सा एलिमेंट डाल के उस मैजिक को थोड़ा एनहेंस करके दिखाएंगे सो दैट इट सूट्स द जनरेशन टुडे एज वेल, और दे वॉन्ट टू शो द वैल्यूज ऑफ दैट

0: Oh, I hate making love songs.
1: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
2: Every celebration begins around a table. And this August, Singapore's biggest celebration deserves a feast to match.
3: National Day, Singapore!
2: And let's get together on 9th August for a special National Day buffet from only $58 plus, complete with a live prata station, Singapore-style chicken curry, succulent kebabs, royal curries, and irresistible Indian desserts. Celebrate, indulge, and say Happy National Day, Singapore, over a royal feast. Shahi Maharani North Indian Restaurant. Reserve your table today. Log on to www.shahimaharani.com.
4: Your passport to the world every Monday morning, from global headlines to a pinch of Bollywood spice.
5: The Morning Show with Renuka, 7 a.m. Mondays.
6: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
7: Check it out. Josh Mera.
5: Take a break, laugh a little, and vibe a lot, because weekend is almost here. Midweek Blues on Radio Musti 24/7. Now, mood change kare.
8: How we love to know moments like these. Radio Basti 24/7 Live. And Rab ke saath yahan par aur chal raha hai kya? Of course, Midweek Blues. Hanji, hanji, ek aur. Aapko yaad hai, this movie, of course, K3G ke hum baat karein. Now, K3G, another one of those movies that we can watch again and again and again. Kitni baar bhi dikha lo, feel wahi aayegi. Aur scenes uske aise rat chuke hai na. Ki, and everybody has their own special feel and moments in that movie. For example, one of my favorite moments is जब काजोल का introduction point आता है ना, वो इंडिया जीत जाती है और वो भागते हुए आती है, हम जीत गए, हम जीत गए, and then she gets into that भांगड़ा mode, ठीक है, कुड़िये कुड़िये, वो वाला चीज होता है. एंड वहीं पे हमारे शाहरुख खान जो है, राहुल, yes, वो दाइजा यानी कि डीजे के घर से बस नीचे उतर रहे होते हैं, एंड तब नजर पड़ती है उनकी नाचती हुई, हमारी भांगड़ा पाती हुई काजोल की. नाउ द थिंग इज दैट देयर इज दिस, क्या होता है कि वो नीचे उतर रहा होता है, उसकी नजरें काजोल पे होती है, एंड सडनली वाइल उसके उसको देखकर उसकी खूबसूरती और उसके वाइब में इतना खो जाते हैं कि ही मिसेस अ स्टेप, एंड वो थोड़ा सा हल्का सा लड़खड़ाते हैं, एंड यू नो राइट भाई, ये जो स्लिप है एंड अ लिटिल फॉल डाउन द स्टेयरकेस व्हाइल शूटिंग दिस सीन, apparently this fall was absolutely genuine. Original choreography में ऐसी कोई you know step miss कर देना और ऐसे लड़खड़ा जाना ये था ही नहीं. Now since the moment looked so natural and suited the sequence, filmmakers हमारे they decided to keep it in the final cut. Shahrukh Khan quickly recovered and of course continued filming, showcasing his professionalism and dedication at that point of time. But the unexpected incident later became the interesting behind the scenes fact, जो कि काफी सारे लोगों को नहीं पता है. नॉट ओनली इट बिकेम दैट, इट बिकेम्स वन ऑफ द मोमेंट्स लाइक आई रिमेंबर इट वन कट टू अनदर कंप्लीटली, बिकॉज इट वॉज शाहरुख खान जस्ट न्यू इट. कि कभी कभी क्या होता है ना कि आप किसी की खूबसूरती में और जिससे प्यार करने लगते हो आप उसमें इतना ज्यादा खो जाते हो दैट या मिसिंग अ स्टेप जस्ट काइंड ऑफ एड्स टू द होल फीलिंग ऑफ इट. हाय हाउ रोमांटिक इज इट. जब ये सब देख के हम लोग बड़े हुए और उसके बाद पता चलता है रियलिटी में कोई स्टेप नहीं मिस करता, कोई भी स्टेप मिस नहीं करता, सारे स्टेप मिस हो जाते हैं बस सिर्फ 10,000-12,000 स्टेप्स गिनते रह जाते हैं हम लोग. क्या ही बोलूं अब, गाना प्ले करते हैं, इसके आगे ना हो पाएगा.

0: looking for the perfect reason to buy jewelry? Well, this National Day, Joyalukkas gives you not one, but two compelling ones. Enjoy 9% GST absorbed on diamond jewelry and 30% off gold jewelry making charges. Beautiful designs, incredible value. Joyalukkas, the world's favorite jewelers. Now presenting One Nation Infinite Brilliance. Offer valid till 10th August only. Visit 412-320 and 134 Serangoon Road. Wishing one and all a happy and bright National Day. The Joyalukkas way.
1: Some stories are easy to tell. पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
2: जीजी
0: कृषि वल नट्स ओनली ऑन GGMartOnline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए GGMartOnline.com।
2: GGMart, योर पर्सनल ग्रोसर।
3: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
4: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं।
5: द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
6: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: take a break, laugh a little, and vibe a lot because weekend is almost here. Midweek Blues on Radio Masti 24/7. Aao, mood change kare.
1: क्या सुंदर खूबसूरत गाना भाई, ओ माय गॉड. एंड द मोमेंट इट स्टार्ट्स, इसका इंट्रो इतना ब्यूटीफुल मुझे लगता है. इट्स जस्ट लाइक इन फेरी टेल काइंड ऑफ थिंग. बट वेल एनीवेज, मूड में तो मैं पूरे हूँ, लेकिन मूड में होने से क्या होता है, शो खत्म होने वाला है. दैट्स राइट भाई, अब आपसे कल मुलाकात होगी मस्ती 90s मिक्स टेप पर. यस, तो तब तक के लिए हैव अ गुड टाइम, हैव अ गुड नाइट. फिर कल जो है सुबह सुबह शुरुआत करिएगा भगवान जी का नाम लेकर हमारे मस्ती पे भक्ति के साथ. एंड उसके बाद मस्ती मॉर्निंग्स में हमारी नुपुरवा आ जाएगी, फिर नुपुरवा के बाद मस्ती कैफे आएगा, और फिर आएगा डन डन डन 11 बजे मस्ती 90s मिक्सटेप का टाइम. एंड सारा फन यहाँ पे खत्म नहीं होता है, क्योंकि कल है थर्सडे, विच मींस शाम के टाइम पे टॉप चार्ट्स लेकर रेणुका जो है वो हाजिर हो जाएंगी. इट इज जस्ट सो परफेक्ट राइट. Thursday suddenly has become so, so very nice and good. So, well, ye tha ye wala plan. Baki ki baatein hongi kal. Bye-bye, take care, good night. I hope you enjoy the show.

0: tuned into Radio Masti 24/7 Live. Keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: आकाश का सोना मंदिर में तन्हाई

0: कभी कभी कि जैसे तुझको बनाया गया मेरे लिए,
1: झूठ बोलते हैं मेरे ख्याल,
0: कि जैसे तुझको बनाया

थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो,

0: समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किससे उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: बचपन में आप सभी ने कहानी सुनी होगी, मैं आज आपको वो फिर से सुनाने आया हूँ। मैं यानी आपका किस्सा गो समर आपके लिए बहुत सारी शख्सियतों की कहानी लेकर एक बार फिर से आ गया। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, गेम चेस सिंगापुर सारू जे अक्का सिंगापुर मारू जे। चलिए आज मैं जिनकी कहानी लेकर आया हूँ आपके लिए अपनी अचीवर सीरीज में, बस वो एक लाइन में आपको बताना चाहता हूँ कि अ होम इज वेयर द मदर इज। तो फिर क्यों ना कुछ और कहने से पहले एक कहानी ही सुनी जाए। एक माँ अपने 3 बच्चों, 1 बेटे और 2 बेटियों को सेब से भरी एक टोकरी देती है जो किचन में रखी है। सभी एकदम ताजा सेब हैं, लाल हैं, एकदम रस से भरे जूसी। बच्चे उसे अपने अपने कमरे में ले जाते हैं और टेबल पर रख देते हैं। माँ उनको एक खराब सेब भी देती, रॉटन एप्पल, कहती है कि इसे भी उसी टोकरी में रख दो। रात होती है, बच्चे सो जाते हैं। फिर सुबह होती है तो माँ बच्चों को कहती है कि जाओ वो सेब की टोकरी ले आओ, हम सब सेब खाएंगे। बच्चे टोकरी लेकर आते हैं लेकिन देखते हैं कि लगभग सभी सेब खराब हो गए हैं, सभी सड़ने लगे हैं। तब माँ बच्चों को बताती है कि माजरा क्या है, क्यों हुआ ये सब, एक खराब सेब कैसे बाकी सेबों को भी, बाकी एप्पल्स को भी खराब कर देता है। और फिर सीख देती है कि हमें बुरे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए क्योंकि वो हमें बुरा बना देते हैं। इस बात को यूं तो 3 बच्चे बड़े ध्यान से सुन रहे होते हैं लेकिन सबसे छोटी वाली बेटी बहुत ज्यादा ध्यान से सुनती है और इस लर्निंग को, इस सीख को अपने जीवन में उतार लेती है और यहां तक कि अपने इन भाई बहनों और माँ को छोड़कर अपना साथी बना लेती है गॉड को। और ये बच्ची कौन थी जिसने जिंदगी भर बस प्रेम की बात की, अपना प्रेम इस धरती के समस्त प्राणियों को दे दिया, जब तक जीती रही यही कोशिश रही कि सब तक वो प्यार पहुंचाए, मदर बन गई सबकी जी, वो मदर टेरेसा कहलाई। वो स्त्री बनकर जन्मी मगर प्रेम की परिभाषा को चरितार्थ करती रही, बस प्यार बांटती रही। आज हमारे साथ लेजेंड्स के अचीवर सीरीज में है मदर टेरेसा, उन्हीं के शब्दों के साथ आज के शो की शुरुआत करेंगे और उसके बाद एक म्यूजिकल ब्रेक लेंगे और फिर कहानी को शुरू करेंगे शुरू से। उन्होंने कहा कि इट इज नॉट हाउ मच वी डू बट हाउ मच लव वी पुट इन द डूइंग, इट इज नॉट हाउ मच वी गिव बट हाउ मच लव वी पुट इन द गिविंग। तो प्यार करते रहिए, प्यार बांटते रहिए और प्यार की ये दास्तां सुनने के लिए वापस लौट कर आइएगा जरूर। मैं हूँ समर, रेडियो 24/7 लाइव पर आपको आज मदर टेरेसा की कहानी सुना रहा हूँ।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
4: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
3: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
5: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर अब सिर्फ एक क्लिक दूर,
6: जीजी
5: कृषि वल नट्स, ओनली ऑन GGMartOnline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए GGMartOnline.com।
6: GGMart, योर पर्सनल ग्रोसर।
7: कहानियाँ उनकी जिनके होने से हम हैं। सुने लेजेंड्स अचीवर्स में समर की जुबानी, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
8: कहते हैं कि वो बहुत कम बात करती थी, अपने बारे में कम बताया करती थी, लेकिन जब भी उनसे पूछा जाता अपनी पर्सनल हिस्ट्री के बारे में तो बस इतना ही कहती, बाय ब्लड आई एम एन अल्बेनियन, बाय सिटीजनशिप एन इंडियन, बाय फेथ आई एम अ कैथोलिक नन, एज टू माय कॉलिंग आई बिलोंग टू द वर्ल्ड, एज टू माय हार्ट आई बिलोंग एंटायरली टू द हार्ट ऑफ जीसस। एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल, आप हैं समर के साथ सुन रहे हैं लेजेंड्स के अचीवर सीरीज में मदर टेरेसा की कहानी, वेलकम बैक। लेकिन आज मैं आपको बहुत दूर ले जाना चाहता हूं सिंगापुर, सिंगापुर से तो बहुत ही दूर यूरोप में, दक्षिणी यूरोप में, साउथ यूरोप में, मैसिडोनिया, ग्रीस, बैल्कन रीजन के पास, अल्बेनिया के स्कोपिये शहर में, जहां हमारी लेजेंड का जन्म हुआ। मगर मैं आपको उससे भी बहुत पुराने वक्त में एक बार लेकर चलूंगा, सदियों पहले, क्योंकि मदर टेरेसा के कैथोलिक नन बनने का सिरा वहीं से खुलता है। ध्यान से सुनिएगा, अल्बेनिया पर शुरू से ही बहुत सारे हमलावर आक्रांता हमला करते रहे। नवी सदी में यानी 9th सेंचुरी में वहां के एम्परर जब थोड़ा कमजोर हुए तो वहां बल्गेरियन और फ्रांस के घुसपैठे भी आ गए, साउथ इटली के भी आ गए और सर्ब्स जैसे लोग भी अटैक करते रहे। लेकिन जिन्होंने सबसे ज्यादा अपना एम्पायर फैलाया वो थे ऑटोमन एम्पायर वाले यानी कि टर्किश लोग। कई सदियों तक इनकी लड़ाई अल्बेनिया के राजा से चली, कभी ये मजबूत होते कभी राजा, मगर आखिरकार ऑटोमन का शासन बना रहा। इवन इन लोगों ने यहाँ के क्रिश्चियन लोगों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन भी कराया, इस्लाम में बदलने लगे। इससे वहां के कुछ लोगों ने मिलकर आजादी की लड़ाई चालू की और ये पार्टी अल्बेनियन लीग के नाम से जानी गई। ये बात मैं बता रहा हूं आपको 19th सेंचुरी के मिड की। इस लीग ने आजादी की लड़ाई खूब जोरों शोरों से लड़ी बैल्कन लोगों के साथ मिलकर। नतीजतन ऑटोमन एम्पायर कमजोर होने लगा और अल्बेनिया आजाद हो गया। ये साल था 1912। अब दरअसल बात यह है कि इस अल्बेनियन लीग के काफी एक्टिव सदस्य थे मदर टेरेसा के फादर निकल बोयाजियो। इसीलिए मैंने कहा था कि ये जान लेना बेहद जरूरी है कि किन सर्कमस्टेंसेस के अंदर हमारे लेजेंड्स जन्मे और उनकी परवरिश में ऐसा क्या था कि उन्होंने ह्यूमैनिटी को सर्व करना अपने सर्वाइवल से ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा। सो हिस्ट्री कैन ओनली अनफोल्ड द मिस्ट्री, मैं आपको ये बताता रहूंगा। लेकिन आपको बता दूं कि मदर टेरेसा बच्चों को ज्योग्राफी भी पढ़ाया करती थी। वैसे थोड़ी बहुत तो मैंने भी आपको पढ़ा दिया, सिंगापुर से इतनी दूर तक लेकर गया, यूरोप घुमाया, बैल्कन रीजन, इटली, कितनी कितनी कितनी सारी जगह दिखाई और अल्बेनिया में है अभी हम बताऊंगा लौट कर। यहीं से कहानी शुरू करूंगा, मदर टेरेसा के बचपन में चलेंगे फिर से। लेकिन फिलहाल तो अभी इन गानों की तरफ चलते हैं। आप हैं समर के साथ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर, सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर सीरीज मेरे साथ।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7। Looking for the perfect reason to buy jewelry? Well, this National Day, Joyalukkas gives you not one, but two compelling ones. Enjoy 9% GST absorbed on diamond jewelry and 30% off gold jewelry making charges. Beautiful designs, incredible value. Joyalukkas, the world's favorite jewelers. Now presenting One Nation Infinite Brilliance. Offer valid till 10th August only. Visit 412-320 and 134 Serangoon Road. Wishing one and all a happy and bright National Day. The Joyalukkas way. See you, see you, boys.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर समर के साथ आप सुन रहे हैं लेजेंड्स अचीवर्स।
1: एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल, मैं हूं समर, आप मेरे साथ हैं लेजेंड्स के अचीवर सीरीज में। और जो आज हमारे दरमियान हैं उनके बारे में जितना भी कहेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो हम ईश्वर को ही जानेंगे, उनके पास ही पहुंचेंगे। निकल बोयाजियो एक काफी बड़ी बिजनेस फैमिली में जन्मे थे और वो खुद भी ट्रेडिंग में काफी अच्छा कर रहे थे। सो अपनी शादी के बाद वो स्कोपिये चले आए थे। स्कोपिये शहर का नाम है और वहां उन्होंने एक घर खरीद लिया। डॉक्टर्स की दवा सप्लाई का काम किया करते थे पूरे टाउन में। इसके बाद वो और भी कई बिजनेस करने लगे। बहुत स्मार्ट बिजनेसमैन होने के साथ ही वो काफी इंटेलिजेंट भी थे। 5 लैंग्वेजेस आती थी उनको, पर वो बिजनेस के सिलसिले में बहुत ज्यादा बिजी रहते थे। यहाँ तक कि लोकल पॉलिटिक्स में भी बहुत इंटरेस्ट रखते थे वो, जो मैंने आपको बताया। आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे और घर के मोर्चे पर उनकी वाइफ तैनात थी, ड्रेनाफाइल बर्ने। 3 बच्चे हुए इनके, सबसे पहले डॉटर आगा, फिर बेटा लजा और आखिर में बेटी एग्नेस गोंगजा, जो बाद में चलकर मदर टेरेसा कहलाई। तारीख थी 26 अगस्त 1910। फादर घर कम ही आते थे, मगर जब भी आते तो बच्चों के साथ खूब वक्त बिताते, खेलते, कहानियां सुनाते। हालांकि घर पर भी लोग अक्सर आते जाते रहते थे पॉलिटिक्स और बिजनेस के सिलसिले में। ऐसे माँ ड्रना पर बहुत सारी जिम्मेदारी थी। वही बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सिखाती, मॉरल एजुकेशन देती, धर्म के बारे में, प्रेम के बारे में, इंसानियत के बारे में पाठ पढ़ाती। एक चीज से माँ को बहुत नफरत थी और वो थी फुलिश बिहेवियर। एक रोज तीनों बच्चे शाम के वक्त बहुत मजे में खेल रहे थे और ऊट पटांग बातें कर रहे थे। माँ ने जब ये देखा तो बहुत गुस्सा हो गई और कमरे की बत्ती बुझाई और चली गई अपने कमरे में। बच्चों को लगा कि ये क्या हुआ, माँ इतना गुस्सा क्यों हुई। पूछने पर वो बोली कि ऐसी मूर्खता के लिए लाइट वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सब बच्चे समझ गए और चुप हो गए। जब एग्नेस 2 साल की हुई तब अल्बेनिया को आजादी मिल गई। उस रोज सभी ने मिलकर अच्छा खाना खाया, खूब डांस किया। फादर ने उनको एक ही बात कही थी, कभी भूलना मत कि तुम्हारे पिता कौन थे, उन्होंने देश के लिए क्या किया। सभी बच्चों के लिए ही वॉज आइडल मैन। हालांकि मदर टेरेसा उस वक्त बहुत छोटी थी, ये बातें उनके भाई ने आगे चलकर बताई। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक रोज ऐसा कुछ हुआ जिसने सबकी जिंदगी ही बदल दी। नन्ही एग्नेस के मन पर भी बहुत बुरा असर हुआ। ये क्या था, कौन सा ट्विस्ट उनकी जिंदगी में आने वाला था, सब कुछ बताऊंगा एक ब्रेक के बाद। मदर टेरेसा की कहानी आप सुन रहे हैं समर की जुबानी रेडियो 24/7 लाइव पर। सुनते रहिए, यह लेजेंड्स के अचीवर सीरीज़।

समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किस्से उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने। ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। आज जी नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ समर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर हस्त सिंह बरोड़ साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र लाइव हिंदी बॉलीवुड रेडियो। लेकिन आज हम अचीवर सीरीज में बात कर रहे हैं मदर टेरेसा की। सब कुछ एकदम सही चल रहा था उनकी जिंदगी में। बचपन की बात है, मदर टेरेसा की, एग्नेस नाम था उनका। अच्छे स्कूल में पढ़ाई चल रही थी, अल्बेनियन लैंग्वेज के अलावा वो दूसरी भाषाएं भी सीख रही थी। उनकी माँ ड्रेना को गरीबों की मदद का बहुत मन किया करता था। फादर को पता चला तो वो उनको अलग से पैसे देने लगे ताकि वो गरीबों की मदद कर सके अच्छे से। मन में ना रखें कोई बात, अक्सर वो इस काम के लिए घर से बाहर जाती और इस काम में उनके साथ हमेशा कौन रहता, आप समझ गए, एग्नेस रहा करती। यानी बचपन से ही उनके अंदर गरीबों की सेवा का भाव पैदा हो गया था। इवन उनकी माँ काफी स्पिरिचुअल भी थी, बच्चों को चर्च लेकर जाती थी प्रेयर्स के लिए। ये बात है साल 1919 की। निकल किसी पॉलिटिकल मीटिंग के लिए बेलग्रेड गए और वहां बहुत बीमार हो गए। वापस आए तो वो ज्यादा बीमार थे। एग्नेस उस वक्त बहुत छोटी थी, 9 साल की थी महज। माँ ने उनको कहा कि तुम चर्च से प्रीस्ट को लेकर आओ। वो रोते रोते चर्च गई। वहां कोई प्रीस्ट मौजूद नहीं था उस वक्त। वो शहर के रेलवे स्टेशन गई जहां उनको एक प्रीस्ट मिले जो उनके फादर को देखने को तैयार हुए। तब तक निकोल की हालत खराब हो चुकी थी, उनको इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो चुकी थी। सभी हॉस्पिटल लेकर भागे उनको, मगर उनके फादर की डेथ हो गई। देखते ही देखते रातों रात सब कुछ बदल गया। अच्छा खासा हंसता खेलता परिवार किसी सदमे में आ गया। रिलेटिव्स और बिजनेस के पार्टनर्स ने सारी प्रॉपर्टी पर, सारे बिजनेस पर कब्जा कर लिया। ड्रेना के पास कोई कागजात भी नहीं थे कि वो क्लेम कर सके। बस एक चीज बची थी और वो था उनका घर। एक घर, एक माँ और 3 बच्चे। लेकिन इससे भी बड़ी दुख की बात यह हुई कि ड्रेना को होशो हवास न रहा। वो बहुत बड़े सदमे में आ गई। 3 बच्चे अपनी माँ की ये हालत देखकर बहुत हैरान थे, क्योंकि उनकी इतनी साहसी माँ एकदम से बदल गई थी। रोती रहती थी बस। ऐसे में सबसे बड़ी बहन एगा ने घर को संभाला, भाई बहनों को संभाला। लेकिन आगे फिर एक अच्छी राह थी। जैसे रात के बाद सवेरा आता है, दुख के बाद सुख आता है। क्या था वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर समर के साथ आप सुन रहे हैं लेजेंड्स अचीवर्स।
1: सुस्वागत हम एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं समर, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर लेजेंड्स के अचीवर सीरीज आप सुन रहे हैं और आज मैं आपको मदर टेरेसा की जीवन की कहानी सुना रहा हूं। हालांकि उस महान शख्सियत की कहानी कह पाना इतना आसान है नहीं, बहुत बड़ी कहानी है, बहुत उतार चढ़ाव है उसमें, लेकिन चलिए इस वक्त में मैं जितना आपको सुना सकता हूं सुनाऊंगा। मैंने उनकी अर्ली लाइफ का हिस्सा अभी आपको सुनाया, जब वो बच्ची थी, लाइफ के हार्डशिप से गुजर रही थी। पिता के गुजर जाने के बाद कई महीने बाद माँ संभली तो देखा कि बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं। उन्होंने खुद को बड़ा कोसा और बिजनेस करने लग गई। पहले अपने हाथ से तैयार किए गए प्रोडक्ट्स बेचती, जैसे एम्ब्रॉयडरी किए हुए तकिए, कुशन, चादर। फिर उन्होंने टेक्सटाइल मिल से कपड़े और कारपेट्स लेकर उनकी मार्केटिंग करना शुरू किया और जल्दी ही घर के हालात अब सुधरने लगे। इसी बीच बच्चे पढ़ रहे थे और माँ के साथ मेहनत भी करते थे। चर्च के साथ भी माँ बहुत इन्वॉल्व रहती थी और इसमें उनके साथ होती थी एग्नेस यानी मदर टेरेसा। उस वक्त वो मैंडोलिन बजाना सीख रही थी। दोनों ही बहनें गाती भी बहुत अच्छा थी, लिहाजा चर्च में प्रेयर्स भी गाती थी। 12 साल की जब हुई एग्नेस तो उन्होंने अपनी माँ से कहा कि वो नन बनना चाहती हैं। उनको लगता है कि जैसे उनको गॉड की कॉल हुई है। इसी बीच उनके घर में माँ 6 अनाथ बच्चे लेकर आई, जिनकी देखभाल का जिम्मा उन्होंने खुद ले लिया। माँ चाहती थी कि तीनों बच्चों में दूसरों के प्रति दया भाव हो, और आप तो जानते हैं किसके भीतर सबसे ज्यादा था ये, जी मदर टेरेसा के। उन्हीं दिनों वहां के लोकल चर्च में एक यंग प्रीस्ट आए, फादर येम्ब्रकोविच, जिन्होंने मदर टेरेसा के उस कॉल को दिशा दी। उन्होंने ही यूगोस्लाविया में चर्च के मेंबर्स से बात की जो नंस को इंडिया भेजा करते थे, इंडिया के बंगाल में। वेल, यहां मदर टेरेसा के बारे में बता दें कि शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल यंग लेडी, बिल्कुल अपनी माँ के जैसी दिखती थी। पढ़ने लिखने की शौकीन थी, कविता भी किया करती थी। हमेशा अपने साथ पेंसिल और नोटबुक रखती, कुछ भी होता तो नोट कर लेती, कविता करती। खूब सारे दोस्त भी थे उनके, लेकिन 18 साल की हुई तो फिर उनको यह एहसास हुआ कि उनको नन ही बनना है। यह साल था 1928। उन्होंने अपनी मां को बता दिया कि ये मेरा फाइनल डिसीजन, आई वॉन्ट टू सर्व। इसके बाद की कहानी आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन एक ब्रेक तो बनता है यहां पर। मैं आपको यह कहानी लगातार सुना रहा हूं रेडियो मसी 24/7 लाइव पर लेजेंड्स की अचीवर सीरीज में। मदर टेरेसा की कहानी आप सुन रहे हैं समर की जुबानी, सुनते रहिए है।

0: थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो।
1: मैंने

0: सपने।
1: समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किससे उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। वेलकम बैक, समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर पहुंच गई है। यह है लेजेंड्स के अचीवर सीरीज, जहां मैं मदर टेरेसा की कहानी आपको सुना रहा हूं रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। सारी तैयारी हो चुकी थी। माँ ने मदर टेरेसा को कहा कि अगर तुमको वाकई लगता है तो जाओ, मगर इसके बाद लौटना मत, एक ही लक्ष्य रखना। बस माँ की इस हिदायत को साथ लिए मदर टेरेसा निकल पड़ी इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लेस्ड वर्जिन मैरी से जुड़े हुए ग्रुप लोरेटो सिस्टर्स का मेंबर बनने, और वहां से इंडिया की यात्रा पर निकल गई। इससे पहले उनका इंटरव्यू हुआ, लोरेटो सिस्टर्स की मदर सुपीरियर ने ये इंटरव्यू लिया, ये तय करने के लिए कि एग्नेस अपने फैसले को लेकर कितनी दृढ़ निश्चयी हैं, डिटरमाइंड हैं या नहीं है। क्योंकि इससे पहले 19th सेंचुरी में जब इन लोगों को बाहर के देशों में भेजा जाता था तो बहुत सारी नंस शादी कर लेती थी, बहुत सी घर लौट आई थी, और एक बार शपथ लेने का मतलब था लौट कर कभी वापस नहीं आना। इंडिया के बंगाल आए इन कैथोलिक चर्च के मेंबर्स ने कई चर्च बनाए और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स भी बनाए, और वहीं इनको टीचर बनाने के लिए भेजना तय हुआ मदर टेरेसा को। मगर मदर टेरेसा ने मना कर दिया, क्योंकि उनको टीचर नहीं बनना था, वो सेवा करना चाहती थी गरीबों की। उन्होंने कहा कि वो क्रिश्चियन धर्म की एजुकेशन नहीं देंगे इंडिया की गर्ल्स को। लेकिन तब भी उनको भेजा गया। 7 सिस्टर्स में से एक वो भी थी जो इंडिया में लोरेटो मिशनरी काम के लिए भेजी गई थी। जनवरी 6 साल था 1929 को 19 साल की एग्नेस जहाज से स्वेज कैनाल, रेड सी और इंडियन ओशन होते हुए बे ऑफ बंगाल के जरिए कोलकाता आ गई। वहां से उनको दार्जिलिंग भेज दिया गया, लेकिन उससे पहले उन्हें पेरिस जाना था ये यात्रा शुरू करने के लिए। तो पेरिस जब वो जा रही थी तो उनकी माँ और बहन भी उनको छोड़ने आई थी। कहीं ना कहीं एग्नेस को मालूम था कि अब वो उनसे कभी नहीं मिलेंगी। क्या गुजरी होगी आप सोच सकते हैं, छोटी सी उम्र में ये डिसाइड कर लेना कि ये गॉड्स कॉल है, कितनी मजबूत इच्छा शक्ति होगी। हालांकि वो थोड़ा कंफ्यूज थी, मन भी भटका हुआ था। उनके सारे दोस्त, उनकी सारी सहेलियां बहुत रोईं। ये भी सच है कि एग्नेस अपनी माँ से फिर कभी नहीं मिली इसके बाद। लेकिन उन्होंने जीवन का एक और बड़ा फैसला जब लिया तो माँ को ही याद किया, उनको खत लिखा। माँ ने जब हाँ कहा तभी वो उस राह पर निकली। उस राह पर मैं भी आपको ले चलूंगा, मगर एक ब्रेक के बाद। अभी तो ये म्यूजिकल ब्रेक आ रहा है, इसे सुनिए। और ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मदर टेरेसा की कहानी आप सुन रहे हैं समर की जुबानी लेजेंड्स के अचीवर सीरीज में, जो आप सुनते हैं रेडियो मस्ट 24/7 लाइव पर। सुनते रहिए

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
2: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो, या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
2: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
3: जीजी।
2: कृषि वल नट्स ओनली ऑन GGMartOnline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए GGMartOnline.com।
3: GGMart, योर पर्सनल ग्रोसर।
4: कहानियाँ उनकी जिनके होने से हम हैं। सुने लेजेंड्स अचीवर्स में समर की जुबानी, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
5: वेलकम बैक, मैं हूं समर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आपसे मुखातिब हूं, और आज मदर टेरेसा की कहानी आप सुन रहे हैं लेजेंड्स के अचीवर सीरीज में। लोरेटो कॉन्वेंट में मदर टेरेसा पढ़ा तो रही थी, ज्योग्राफी पढ़ा रही थी वहां पर, मगर उनको कुछ और करना था। हालांकि यहीं आकर उन्होंने अपना नाम भी बदला, नाम क्या रखा जाए ये भी एक सवाल था। उन्होंने लेट 19th सेंचुरी की एक फ्रेंच नन ट्रीज मार्टिन के नाम पर अपना नाम रखने का सोचा, क्योंकि वो भी बहुत जल्दी, उस वक्त उनकी उम्र 15 साल की थी, तब उस उम्र में ही गॉड्स कॉल सुनकर सब कुछ छोड़कर आ गई थी। मगर बहुत ही कम उम्र में ट्यूबरक्लोसिस टीबी हो जाने की वजह से वो चल बसी, उस वक्त उनकी उम्र 24 साल की थी। लेकिन यहां दिक्कत यह थी कि ऑलरेडी इस नाम की नन मौजूद थी, एग्नेस को यही नाम पसंद था, सो शी हैज चोजन इट्स स्पेनिश स्पेलिंग टेरेसा, TERESA। ये नाम फाइनल हो गया साहब, ये भी एक स्पेनिश सेंट से इंस्पायर्ड था। लेकिन लोरेटो कॉन्वेंट में उनको बंगाली टेरेसा के नाम से सिस्टर्स बुलाने लगी, क्योंकि उनको बंगाली आ गई थी। दार्जिलिंग से उन्हें कोलकाता के सेंट मैरीज स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया। यहाँ ये लोरेटो सिस्टर्स एक लोकल सेंट एनी की डॉटर्स थी, यानी लोकल बंगाली विमेन थी। ये लोग साड़ी पहनती थी, गर्मियों में सफेद और सर्दियों में नीली। सिस्टर टेरेसा बच्चों का खूब ख्याल रखती, खुद आंगन को धोती, साफ करती, तो उनको लोग माँ बुलाने लगे। लोरेटो सिस्टर्स को एक शपथ लेनी होती थी कि वो गरीबों में रहेंगी, मतलब उनको लाइफ के सुखों से, लग्जरी से कोई लेना देना नहीं होगा। सिस्टर टेरेसा ऐसा ही करती थी, जो चादर कोई नहीं लेता था वो ले लेती, किसी के ऑलरेडी पहने हुए शूज पहनती, मतलब नया नहीं खरीदती थी, यूज किए हुए शूज पहनती थी, कोई भी दिखावा नहीं करती थी, बस एक मुस्कान हमेशा रखती थी, जोक्स पर दोहरा होकर हंसती थी। अच्छा, कॉन्वेंट की वॉल्स के पीछे की ओर एक कच्ची बस्ती थी, एक झील थी जिसे मोती झील कहा करते थे। इसी के किनारे एक स्लम था, यहां लोरेटो कॉन्वेंट की स्टूडेंट्स जाकर इन लोगों की सैटरडे को मदद किया करती थी, लेकिन सिस्टर टेरेसा नहीं जा पाती थी ड्यू टू रूल्स ऑफ लोरेटो मिशनरी। वेल, धीरे धीरे वो सिस्टर टेरेसा से मदर टेरेसा पुकारी जाने लगी, और उस वक्त उनकी उम्र महज 27 साल थी, 27 ईयर्स। वक्त गुजरता गया और पूरे वर्ल्ड में चेंजेस होने लगे। वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ, उधर इंडिया में, खासकर बंगाल में बहुत सारे बदलाव हो रहे थे। बंगाल में भुखमरी और अकाल का असर होने लगा, और ऐसे में मदर टेरेसा को एक और फाइनल कॉल हुई गॉड की। इस राह में उनको एक स्पिरिचुअल एडवाइजर भी मिले जो आगे आने वाले सालों तक उनके साथ रहे। उनके बारे में एक ब्रेक के बाद बताऊंगा आपको मैं, फिलहाल ये म्यूजिकल ब्रेक है। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, और यह है मदर टेरेसा की कहानी, जिसे आप सुन रहे हैं समर की सुबह रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। सुनते रहिए।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर समर के साथ आप सुन रहे हैं लेजेंड्स अचीवर्स।
1: वेलकम बैक, मैं हूं समर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर लेजेंड्स के अचीवर सीरीज में आज बात हो रही है मदर टेरेसा की। जब वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुआ तो मदर टेरेसा ने अपनी मां को एक चिट्ठी लिखी जो उस वक्त टिराना में रहा करती थी उनके भाई बहनों के पास। उन्होंने अपनी मां को बताया वो राज जो उन्हें भगवान ने उनके कानों में कहा था। वो गरीबों अनाथ बच्चों की सेवा करना चाहती हैं। गॉड्स कॉल वाज टू सर्व पुअरेस्ट ऑफ पुअर, मगर लॉरेटो में रहते हुए ये संभव नहीं था। मां का जवाब आया, उन्होंने वही लिखा कि वो उस राह पर जा सकती हैं मगर डिवोशन और कंप्लीट डेडिकेशन के साथ। वेल, इसमें उनका साथ दिया फादर वैन एक्सम ने जो नए नए आए थे कलकत्ता में। उन्होंने अपनी मन की बात उन्हें बता दी और फादर ने उनका पूरा साथ दिया। काफी मुश्किलात हुई क्योंकि छोड़ना बहुत मुश्किल था। रोम में पोप तक बात पहुंची, आखिरकार उन्हें मानना ही पड़ा। मदर टेरेसा कैथोलिक नन बनी रहेंगी, यानी लोरेटो मिशनरी की नन, मगर वो जो सबसे अभावग्रस्त हैं उनकी सेवा करेंगी। उन्होंने लगभग एक साल तक पटना के हॉस्पिटल में ट्रेनिंग ली, तब कहीं जाकर नर्स का काम सीख पाई और फाइनली वो तैयार थी मैदान में काम करने को। साल था 1949। साथ में उनके एक बंगाली लड़की चली आई थी, नाम था शुभासिनी दास। 3 साल बाद 1952 में मदर टेरेसा और मिशनरी ऑफ चैरिटीज अपने नए घर में आ गए जिसे मदर हाउस कहा गया। इसके बाद तो सब इतिहास है साहब। मदर टेरेसा ने अपने आप को पूरी तरह से गरीबों को समर्पित कर दिया। अच्छा, इवन यहां मदर हाउस में भी जो भी सिस्टर काम करती थी उनका जीवन भी बहुत कठिन हुआ करता था। 3 साड़ियां, 1 छाता, 1 चादर, 1 जोड़ी चप्पल, यही इनकी प्रॉपर्टी होती थी। जब इनकी ड्रेस डिसाइड हो रही थी तो इसकी भी परमिशन ली गई, इसकी भी स्वीकृति ली गई। 3 ऑप्शन में से सफेद साड़ी वाला चुना गया जिस पर नीली बॉर्डर थी जो मिशनरी का प्रतीक थी, और लेफ्ट हैंड की तरफ एक क्राइस्ट का साइन होता था। ब्लाउज पूरा स्लीव्स का होता था सफेद रंग का, और फिर ये मदर्स हाउस का सिंबल बन गया। तो चलिए, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी। आप सुन रहे हैं मदर टेरेसा की कहानी समर की जुबानी।

0: 360 24/7 live.
1: वेलकम बैक मदर टेरेसा की कहानी आप सुन रहे हैं लेजेंड्स के अचीवर सीरीज में समर के साथ। यह सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र लाइव हिंदी बॉलीवुड रेडियो सिंस 2009 रेडियो मस्ती। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इंडिया के बहुत ही फेमस फोटोग्राफर हुए रघु राय। उन्होंने मदर टेरेसा पर बहुत काम किया, कई किताबें लिखी, उनकी बहुत सारी तस्वीरें क्लिक की, उनको डॉक्यूमेंट किया बहुत पहले ही जब मदर को वर्ल्ड रिकॉग्निशन नहीं मिली थी तभी। और वो रघु राय जी के दिलो दिमाग पर इस तरह से छा गई थी, उन्हें इंस्पायर कर दिया था कि रघु राय जी के घर में जगह जगह मदर की तस्वीरें दिखाई देती थी। उनकी तस्वीरों का एक बहुत ही पसंदीदा कैरेक्टर थी मदर। रघु राय जी के घर में उन दिनों बाथरूम डार्क रूम हुआ करता था, वहां जगह जगह मदर की तस्वीरें थी। रघु राय जी की बेटी पूछती, पापा ये कौन है? तो वो कहते, मदर। तब उनकी बेटी सोचती कि शायद ये हमारी ग्रैंड मदर होंगी। बाद में बड़े होने पर उनको मालूम हुआ कि वो जाने कितनों की मदर और ग्रैंड मदर हैं। रघु राय साहब एक दफा उनको क्लिक करने के लिए गए तो मदर ने कहा, देखो तुम कल मत आना। रघु राय जी ने पूछा, क्यों? तो इस पर मदर ने जवाब दिया, कल ईस्टर डे है और मैं नहीं चाहती कि कोई इधर उधर घूमे और हमारी पिक्चर्स ले जब हम प्रेयर्स में हो। रघु राय जी को बड़ा खराब लगा ये सुनकर, क्योंकि वो चाहते थे कि वो मदर को प्रार्थना करते हुए कैद कर पाए अपने कैमरे में, दिखा पाए दुनिया को, कैप्चर कर पाए उस मोमेंट को। तब उन्होंने कहा, आप दो बड़ी प्रेशियस बात कहती हैं, एक तो ये कि आप पुअरेस्ट ऑफ पुअर की देखभाल करती हैं, इसके बाद दूसरी चीज आप ये करती हैं कि आप गॉड से कनेक्ट हो जाती हैं और खुद को रिजुविनेट करती हैं। सो मदर, आई हैव डन हाफ ऑफ माय स्टोरी, अदर हाफ इज मिसिंग। मैंने कभी जीसस को नहीं देखा। आप कहती हैं जब आप प्रेयर करती हैं तो वो आपकी आंखों में होते हैं। मदर, यू कांट डिनाई मी। हाँ, मदर भी निरुत्तर हो गई। इस पर मदर ने एक शर्त जरूर रख दी उनके आगे कि तुम कल सुबह 6 बजे आ जाना और ठीक मेरे बाजू में बैठ जाना, बिल्कुल चुपचाप, और चुपचाप फोटो लेते रहना, वहां से हिलना भी मत। प्रॉमिस करने को बोला। रघु राय जी ने कहा, अच्छे बच्चे की तरह पक्का प्रॉमिस। और दूसरे दिन सुबह सुबह वहां पहुंच गए मदर हाउस में। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए एक ब्रेक की जरूरत रहेगी। अब जब सस्पेंस आ जाता है तो उस पर एक ब्रेक लगाना तो बनता ही है। ब्रेक के उस पार होगी थोड़ी और ममता और माँ। मदर टेरेसा की कहानी आप सुन रहे समर की जुबानी, सुनते रहिए।

0: You are tuned into Radio Mighty 24/7 Live, keeping you entertained on the go.
1: समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किस्से उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
2: हाँ जी, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। मैं हूँ समर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर ले आया हूँ आपको आज मद हाउस में। ईस्टर डे है आज, मद प्रार्थना में जाने को है तैयार अपनी सारी फैमिली मेंबर्स के साथ। इतने में रघु राय, मशहूर फोटोग्राफर, मशहूर फोटो जर्नलिस्ट भी वहां पहुंच जाते हैं। मदर उनको बड़े मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग कहती हैं और चैपल में ले जाती हैं और अपने से 3-4 फीट दूरी पर बिठा देती हैं, चुपचाप बैठे रहने की ताकीद के साथ। लेकिन वो तो फोटोग्राफर ठहरे साहब, उनको तो एक ही जगह से पिक्चर लेने को कहा जाए तो कैसे पॉसिबल है, वो तो अलग अलग एंगल ढूंढेंगे। वहां से फोटो ठीक नहीं आ रहा था तो लिहाजा रघु राय उठे और सामने की ओर से उनकी 3-4 तस्वीरें ले ली। प्रेयर के बाद मदर को उन्होंने कहा कि मदर मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपना प्रॉमिस नहीं निभा पाया। मदर ने मुस्कुराकर उन्हें माफ कर दिया और कहा ऐसा कभी मत करना। ओह, कितनी भी बातें करें मदर टेरेसा की कम है, मैं उनके इतने बड़े जीवन से बस वहीं तक की ठीक से पूरी कहानी सुना पाया जब जीवन के सबसे कठिन निर्णय उन्होंने लिए, जब वो अड़िग रही हटी नहीं। और ऐसे ही जीते जीते साल 1997 में उनकी देह हमें छोड़कर चली गई, लेकिन कितनी ममता वो हमें दे गई। ईयर 1979 में उनको नोबेल प्राइज मिला, उन्हें मैग्सेसे प्राइज भी मिला और उनकी डेथ के बाद 2016 में उन्हें सेंट की उपाधि दी गई। जाने कितने पुरस्कार उनको दिए गए, लेकिन उनके त्याग और प्रेम के आगे ये सब फीका और कम है, और हमारी ओर से उन्हें नमन है। उन्हीं के शब्दों के साथ मैं आज के शो की समाप्ति की इजाजत चाहूंगा। तो ये सुनिए और याद रखिएगा, आपको भी रखना है अपना ख्याल, अपने अपनों का ख्याल, अपने आसपास के लोगों का और चीजों का ख्याल। किसी के दिल में मोहब्बत बनकर बस जाना है, किसी के चेहरे पर मुस्कान बनकर सज जाना है और कुछ ऐसा कर जाना है कि लोग आपको याद करें। याद मुझे भी रखिएगा अपनी दुआओं में। मेरा नाम है समर, आपसे मिलूंगा यहीं पर, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, टेक केयर।
3: दैट इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड, वोकेशन इन द वोकेशन। आई ऑलरेडी बिलोंग टू क्राइस्ट एंड देन हिज कॉल केम दैट to give all and to be one of the poor amongst the poor.
4: Mother, you are one of the very special people to whom God has given a call. Did it happen just in a flash, on an instant, or did you know it was coming?
3: It's just a call in the call.
4: A call within a call?
3: Within a call.
4: And that was to go out of Loreto and serve the poorest of the poor?
3: To bring God's love and compassion amongst the people who were unwanted, unloved, uncared, who have no one.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
3: Good morning!
4: रात अकेली है
5: तो क्या हम तो आप

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
1: गाना चाहिए, आप बोलो हम बनाएंगे। चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन, ऑल इज वेल। आपकी प्लेलिस्ट आपकी मस्ती, व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
3: Check it out.
0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आप

कहां से कहां जाऊं, कहां मैं छुप जाऊं, ये आधा सा दिल मैं कैसे लगाऊं, हूं खुद से जुदा।

दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो, तो जिंदा हो तुम। नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो, तो जिंदा हो तुम। हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो। हर एक लम्हे से तुम मिलो खोले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा देखिए निगाहें। जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो, तो जिंदा हो तुम। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके

0: संजना, संजना।
1: I'm sorry, मैंने आपको पहचाना नहीं।
2: तेरे लबों पे इनकार है, मेरे लबों पे इकरार है। हाँ यही तो है सब निशानियां,

0: और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना।
1: रात अकेली है। जोश में रहो।
2: What is your behavior of choice this evening? Do I sound a little cheesy?
3: Where's the money? Where's the money? Where's the money? Where's the money?

0: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ। भक्ति, प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर। मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

0: फ्लाइट टिकट खरीदे, दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: For show timings, check out the Radio Masti app now.

0: सुन टका टक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो।
2: You know what? कई बार ऐसा होता है कि सच बोलने से ज्यादा झूठ बोलने में डोपामीन रिलीज होता है। हेलो हाय, मैं आरजे रूपर मसीह मॉर्निंग शो पर आपके साथ। एंड छोटे छोटे झूठ जो होते हैं ना, कि आज सुबह ब्रेकफास्ट करके हम आए हैं, ऐसी बात बोल तो देते हैं, वो भी इसलिए कि सामने वाला जो है ना वो हमें अपना लंच ना ऑफर करे, राइट? या फिर जब हम घर से कुछ चीज़ें भूल आते हैं और यहाँ के बहाना बना देते हैं कि अरे वो तो मेरा चार्जर मोबाइल का ख़राब हो गया था इसलिए मैं नहीं लाया। जबकि ऑफकोर्स आपके पास रीज़न ये है कि आप चीज़ें घर पर भूल भूल के आ रहे हैं। सो डेफिनेटली कुछ कुछ चीज़ों में ना झूठ बोलने में बड़ा मज़ा आता है। इससे आप समझ गए होंगे कि आज सुबह सुबह ऑफिस आने के बाद मैंने जरा एक आध चीजों में झूठ बोल दिया है डेफिनेटली। लेकिन आपसे बहुत सारी एंटरटेनिंग बात करूंगी, उसमें बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगी। हाँ, मिर्च मसाला जरूर बोलूंगी लेकिन झूठ नहीं बोलूंगी। सो डेफिनेटली रेडियो मसी 24/7 लाइव पर मेरे यानी आरजे नुपुर के साथ शुरू हो चुका है मस्ती मॉर्निंग शो। सो आपको कहीं नहीं जाना है मेरी जान, स्टे ग्लूड एंड डेफिनेटली आपके फेवरेट वाले गाने सुट्टी सुट्टी वाले, हाँ वो लगाती हूँ इन अ शॉर्ट वाइल।

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन जोश में
2: कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोगों की हेयर स्टाइल अच्छी होती है, कुछ लोगों का बोलने का ढंग अच्छा होता है, कुछ लोग जिस कंट्री से आए हैं वहाँ के रिचुअल्स अच्छे होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जो स्टाइलिंग है, कपड़े हैं, नज़ाकत है, वो बड़े अच्छे होते हैं। सो डेफिनेटली मैं आज ऊपर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपको बताना चाहेगी, इन सारी चीज़ों में एक पॉपुलैरिटी बटोर रही हैं कौन? कंगना रनौत। एंड डेफिनेटली पार्लियामेंट की वो मेंबर हैं, मिनिस्टर हैं, एंड जिस तरह से वो एक सोफिस्टिकेटेड तरीके से साड़ी पहनकर पहुंचती हैं, साड़ी पहने कहीं ना कहीं दिखाई देती हैं, तो उनके लिए कहा जा रहा था कि भाई ये सब कहाँ से आ रही है। सो रिसेंटली वो एक लोकल वेंडर्स की जो एग्जीबिशन होती है ना, वहाँ पर पाई गई एज अ गेस्ट, और वहाँ पर उन्होंने सारे जो इंडियन आर्टिसंस हैं उन सबको थैंक्स कहा कि भाई इनकी वजह से वो जो साड़ीज उनके ऊपर इतनी बढ़िया निकल कर आ रही है ना, ये साड़ी बन पा रही है और वो इंजॉय कर पा रही है। तो डेफिनेटली मेड इन इंडिया साड़ी वाला प्रमोशन इन्होंने तो कर दिया है, पर बाकी बातें मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर थोड़ी सी देर में आके बताएगी।

0: सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान,
2: जोश में रहो।
1: बस कुछ ही वक्त की बात है कि आप और मैं साथ में बोलेंगे क्या, गणपति बप्पा मोरिया। डेफिनेटली सिंगापुर, एंड हम जिस तरह से इस ट्रेडिशन को सिंगापुर में रहते रहते बरकरार रखते हैं, तो लोग भी इंजॉय कर रहे हैं, आप और हम भी इंजॉय कर रहे हैं, और इंडिया के दूर रहते हुए मिनी इंडिया हमने क्रिएट किया हुआ है। सो आपके इसी जर्नी में आपका साथ दे रहा है कौन, GGMart.online.com। हाँ जी, डीडी मार्ट में आपको इस बार मिलेंगी गणेश जी की ऐसी प्रतिमा कि आप मतलब उन्हें देख के ही बोल देंगे वाह क्या बात है। सो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से प्री ऑर्डर दे सकते हैं और 9th, 10th, 11th, 12th या 13 सितंबर की प्रेफर्ड डेट चूज कर सकते हैं और अपने गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन को इस बार और ऑसम बना सकते हैं। जो आइडल की प्राइसिंग है वो आपको 50 से 120 सिंगापुर डॉलर के बीच मिल जाएगी, एंड जो आपको एडवांस देना होगा बाकी पेमेंट बाद में देना होगा, और गणेश जी की प्रतिमा के साथ आपको फ्री पूजा किट भी मिल जाएगी। तो बुकिंग करवा सकते हैं आप ऑनलाइन भी, या वॉक इन बुकिंग भी अवेलेबल है। उसके लिए आपको विजिट करना होगा GGMart 432 Balestier रोड या फिर GGMartOnline.com, जहां पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। आप कॉल भी कर सकते हैं 8085-6577 पर। सो इस गणेश उत्सव को GGMart घर बैठे आपको और ऑसम बनाकर दे रहा है। मस्ती मॉर्निंग शो पर आरजे नुपुर आपके साथ।

0: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ
3: शाम की चाय हो ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग
2: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ
4: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर
5: जीजी
4: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com प्रीमियम कैश्यूज कैलिफोर्निया आमंड्स पिस्ताचियोस पम्पकिन सीड्स मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com
5: GGMart, your personal grocer.
6: गाना चाहिए आप बोलो हम बनाएंगे चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन
7: All is well.
6: आपकी प्लेलिस्ट आपकी मस्ती व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151893 पर मस्ती वॉइस आपकी चॉइस
0: Only on Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
1: Check it out.

0: Every celebration begins around a table. And this August, Singapore's biggest celebration deserves a feast to match.
1: Happy National Day, Singapore!
0: And let's get together on 9th August for a special National Day buffet from only $58 plus, complete with a live prata station, Singapore-style chicken curry, succulent kebabs, royal curries, and irresistible Indian desserts. Celebrate, indulge, and say Happy National Day, Singapore, over a royal feast. Shahi Maharani North Indian Restaurant. Reserve your table today. Log on to www.shahimaharani.com. गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: चेक इट आउट
4: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
5: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टकाटक
6: जोश में
7: यू नो व्हाट धीरे धीरे से आपकी मूवीज के टेस्ट बदलते जा रहे हैं नहीं नहीं नहीं नहीं ये उम्र का तगाजा नहीं है ये कंटेंट का तगाजा है हमें जो चीजें सही परोसी जा रही हैं हम कंज्यूम कर ले रहे हैं जैसे अभी आप एक्शन मूवी पसंद कर रहे हैं वैसे ही एक टाइम पर आप ना कॉमेडी मूवी सबसे ज्यादा पसंद करते थे राइट वही कॉमेडी मूवीज जो कि बिना कोई उलझलूल वो कह सकते हैं किसी के पर्सनल वाले जोक मारे बिना आपको हंसा देती थी राइट आज ऐसी ही एक मूवी का एक फेमस डायलॉग लेकर आ चुकी हूँ एंड जी एक फेमस मूवी का एक फेमस डायलॉग प्ले कर रही हूँ और वो डायलॉग कौन सी मूवी से है आपको गेस करना है
8: अजी ये देखिए हमारा नया पपी
9: अरे वाह कहाँ जा रहे हो हिप्पोपोटामस के साथ
8: ये हिप्पोपोटामस नहीं मेरा कुत्ता है
9: अरे मैं कुत्ते से ही पूछ रहा हूँ कहाँ जा रहा है हिप्पोपोटामस के साथ
7: एग्जैक्टली अगर आप पहचान गए हैं इस डायलॉग को तो डेफिनेटली आप मुझे बता सकते हैं रेडियो मस्ती 24/7 लाइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे डीएम करके क्योंकि इस मूवी में ये जो सारे कैरेक्टर्स थे ना वो चाहे अक्षय खन्ना का हो वो चाहे परेश रावल का हो रिमी सेन का हो आफ्ताब का हो ये सारे कैरेक्टर्स उभर कर आए थे चलो चलो चलो सही जवाब दो और बने रहो रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर